हरि भाई अर्ध चंद्र माति शुभ्र गंगा लिंपिले सर्वांगा चिता भस्म लिंपिले सर्वांगा

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार यह फैसला घटनास्थल पर स्थिति का जायजा लेने और हादसे के प्रारंभिक आकलन के बाद लिया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा बताया गया है कि इस गंभीर घटना के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसकी पूरी जवाबदेही तय की जाएगी और कानून के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच कल देर रात

0: एक और शव मिलने के बाद हादसे में मरने वालों की संख्या 6 हो गई है। घटनास्थल पर राहत और बचाव अभियान जारी है। एनडीआरएफ, अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियों की टीमें मौके पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाघी ने कहा है कि 4 से अधिक मंजिल वाली सभी अवैध निर्माण वाली इमारतों को तत्काल सील किया जाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय का श्री वेंकटेश्वर कॉलेज आज इमारत हादसे के मद्देनजर बंद रहेगा। आर्यभट्ट कॉलेज ने भी आज शिक्षण कार्य स्थगित कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अधिकारी घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं तथा हादसे से प्रभावित लोगों की मदद की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का निर्माण कर रहे हैं। फ्रांस के पेरिस में स्वामी नारायण मंदिर के उद्घाटन के दौरान श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा कहा कि प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा से लेकर अंतरिक्ष और जलवायु परिवर्तन तक दोनों देश नई गति और नई ऊर्जा के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष इस वर्ष को भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के रूप में मना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी विशेष है क्योंकि ये दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर टिकी है।
1: BAPS के माध्यम से जब अलग अलग देशों में मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो वहाँ भारत के प्राचीन विचार और मानवीय मूल्य भी साथ साथ ही जाते हैं। और भारत का विचार कहता है समानम मनः सह चित्तमेषाम, अर्थात हमारे मन समान हो, हमारे हृदय साथ जुड़े। इसलिए आज जब फ्रांस में इतना भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है, ये फ्रांस की विविधता को तो समृद्ध करेगा ही, इससे भारत और फ्रांस के सांस्कृतिक संबंधों को भी ऊर्जा मिलेगी।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल संयुक्त अरब अमीरात के 3 दिन की यात्रा पर दुबई पहुंचे। वो दुबई में वार्षिक निवेश बैठक कांग्रेस में भाग लेंगे और निवेशकों के समक्ष मध्य प्रदेश को एक आकर्षक निवेश स्थल के रूप में प्रस्तुत करेंगे। यात्रा का लक्ष्य रसद, खनन, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित सभी क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मीडिया की उन अटकलों और गलत सूचनाओं पर स्पष्टीकरण जारी किया है जिनमें इसरो के निजीकरण या उसकी भूमिका कम करने के प्रयासों की बात कही गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में इसरो ने कहा कि न तो उसका निजीकरण और न ही उसका महत्व कम किया जाएगा। अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी का उद्देश्य अंतरिक्ष कार्यक्रम को सक्षम बनाना है। ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी ने कहा है कि आने वाले दिनों में हॉर्मुज जलडमरू मध्य के बाहर एक नया प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ समन्वय के बिना इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले किसी भी जहाज को ईरान की प्रतिबंध सूची में डाल दिया जाएगा। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मेजर जनरल मोहसिन रिजाई ने कहा है कि यह प्रतिबंधित क्षेत्र अमरीकी नौसेना की नाकाबंदी वाली सीमा से शुरू होकर फारस की खाड़ी के कुछ हिस्सों तक फैलेगा। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स का खिताब जीत लिया है। भारतीय जोड़ी ने कल चीन के खिलाड़ियों को हराया। ये इस प्रतियोगिता में भारत का पहला तथा इस जोड़ी का इस सत्र का दूसरा खिताब है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर आधारित होने के कारण खास बताया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए। इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। इसरो ने कहा, अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों का उद्देश्य एक व्यापक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र बनाना, इसे निजीकरण के बजाय पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार और क्षमता वृद्धि के रूप में देखा जाना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गोवा के पणजी में आज पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ओपेक प्लस समूह ने अक्टूबर के लिए तेल उत्पादन लक्ष्य को अपरिवर्तित रखने का फैसला किया और भारत ने ताशकंद में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर 20 वर्ष बाद AFC अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप के लिए क्वालिफाई किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का निर्माण कर रहे हैं। फ्रांस के पेरिस में स्वामी नारायण मंदिर के उद्घाटन के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री मोदी ने कहा कि भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी विशेष है, क्योंकि ये दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर टिकी है।
1: बीते वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। मेरे मित्र प्रेसिडेंट मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना रहे। टेक्नोलॉजी, AI और डिफेंस से लेकर स्पेस और क्लाइमेट एक्शन तक हम एक नई गति और नई ऊर्जा के साथ मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं। हम 2026 को इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के रूप में भी सेलिब्रेट कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि इतिहास फ्रांस में भारतीय सैनिकों के बलिदानों का गवाह है। श्री मोदी ने कहा कि आज योग भारत और फ्रांस के बीच आपसी जुड़ाव का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन दिनों भारत फ्रांस संयुक्त उद्यमों की संभावनाओं पर काफी चर्चा हो रही

0: है। उन्होंने कहा कि स्वामी नारायण मंदिर ने इस संभावना को भी एक नया आयाम दिया है।
1: भारत फ्रांस ज्वाइंट वेंचर्स की संभावनाओं पर बातें होती है, स्वामीनारायण मंदिर ने इस संभावना में भी एक नया आयाम जोड़ा है। ये मंदिर मेड इन इंडिया है और बिल्ट इन फ्रांस है। इसके काफी पत्थरों को भारत में तराशा गया है। भारत की प्राचीन प्रतिभा यहाँ फ्रांस में आधुनिक इंजीनियरिंग से आकर जुड़ चुकी है। पेरिस में इस भव्य मंदिर ने आकार लिया है, इसलिए मैं आशा करता हूँ ये मंदिर सदियों तक भारत और फ्रांस के बीच सहयोग और संभावनाओं का भी प्रतीक बनकर उभरेगा।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के भी निर्देश दिए।
2: जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था। बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसी काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए। दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा।
0: मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार ये फैसला घटनास्थल पर स्थिति का जायजा लेने और हादसे के प्रारंभिक आकलन के बाद लिया गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा बताया गया कि इस गंभीर घटना के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसकी पूरी जवाबदेही तय की जाएगी और कानून के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कल देर रात एक और शव मिलने के बाद हादसे में मृतकों की संख्या 6 हो गई है। घटनास्थल पर राहत और बचाव अभियान जारी है। NDRF, अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियों की टीमें घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और NDRF के महानिदेशक से बात कर घटनास्थल की स्थिति का जायजा लिया। श्री शाह ने कहा कि घायलों को सभी जरूरी चिकित्सा सहायता दी जा रही है। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि 4 से अधिक मंजिल वाली सभी अवैध इमारतें तत्काल सील की जाएंगी। दिल्ली विश्वविद्यालय का श्री वेंकटेश कॉलेज आज इस हादसे के मद्देनजर बंद रहेगा। वहीं आर्यभट्ट कॉलेज ने भी आज शिक्षण कार्य स्थगित कर दिया है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मीडिया की उन अटकलों और गलत सूचनाओं पर स्पष्टीकरण जारी किया है जिनमें इसरो के निजीकरण या उसकी भूमिका कम करने के प्रयासों की बात कही गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में इसरो ने कहा कि ना तो उसका निजीकरण और ना ही उसका महत्व कम किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी का उद्देश्य अंतरिक्ष कार्यक्रम को सक्षम बनाना है। इसरो ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों का उद्देश्य एक व्यापक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। इसलिए इन सुधारों को निजीकरण के बजाय पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार और क्षमता वृद्धि के रूप में देखा जाना चाहिए। इसरो ने कहा कि परिपक्व और विस्तार योग्य तकनीकी क्षमताओं को भारतीय उद्योग द्वारा तेजी से विकसित किया जा सकता है। इससे बड़े पैमाने पर उत्पादन, व्यवसायीकरण, नवाचार और वैश्विक बाजारों तक पहुंच संभव होगी। जबकि इसरो के वैज्ञानिक और तकनीकी मानव संसाधन को उन्नत अनुसंधान, अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों और जटिल राष्ट्रीय मिशनों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिलेगी। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
0: ये समाचार हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
6: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह आज गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये बैठक गृह मंत्रालय के अंतर राज्य परिषद सचिवालय द्वारा आयोजित की जा रही है।
7: इस बैठक में गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ मंत्री शामिल होंगे। दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के प्रतिनिधि भी बैठक में हिस्सा लेंगे। परिषद का यह मंच आपसी सहयोग को बढ़ाने और साझा हितों से जुड़े मामलों पर मिलकर आगे बढ़ने का अवसर देता है। बैठक में केंद्र और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इसके बाद अमित शाह गोवा पुलिस को प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर प्रदान करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल संयुक्त अरब अमीरात के 3 दिन की यात्रा पर दुबई पहुंचे। वे दुबई में वार्षिक निवेश बैठक कांग्रेस में भाग लेंगे और निवेशकों के समक्ष मध्य प्रदेश को एक आकर्षक निवेश स्थल के रूप में प्रस्तुत करेंगे। श्री यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश के साथ जुड़कर कई देशों ने अपना व्यापार बढ़ाया है।
8: प्रदेश से जुड़ करके कई सारे देशों ने भी अब अपना व्यापार व्यवसाय बढ़ाया है और यही कारण है कि पिछले साल ही हमारा 76,000 करोड़ का निर्यात मध्यप्रदेश से हुआ। ऐसे में हम अपने इस व्यापार व्यवसाय के साथ राज्य के युवाओं के लिए रोजगार, सभी के लिए समृद्धि और परस्पर द्विपक्षीय संबंधों में एक दूसरे के आधार पर व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए हम दोनों कटिबद्ध है।
0: दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने 2 यात्रियों के पास से 484 चांदी के सिक्के और 1 सोने का सिक्का जब्त किया है। इनमें 134 चांदी के सिक्के पुरातात्विक महत्व के हैं। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 110 के अंतर्गत सिक्कों को जब्त कर लिया गया है। मामले में आगे की जाँच जारी है। ओपेक प्लस समूह के 7 प्रमुख देशों सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की। बैठक में वैश्विक तेल बाजार की स्थिति और संभावनाओं की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
9: इन देशों ने वैश्विक स्तर पर बनी अनिश्चितता के बीच अक्टूबर के लिए तेल उत्पादन नीति में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। ओपेक प्लस ने सितंबर में प्रतिदिन करीब 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाया था। इसके साथ ही वर्ष 2023 में की गई प्रतिदिन करीब 16,50,000 बैरल की स्वैच्छिक उत्पादन कटौती को वापस लेने की प्रक्रिया पूरी हो गई। यह बैठक ईरान से जुड़े संघर्ष और हॉर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास जारी व्यवधानों सहित तेल निर्यात में रुकावटों की पृष्ठभूमि में हुई। इन व्यवधानों के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति और कीमतों पर ओपेक प्लस के उत्पादन संबंधी फैसलों का असर सीमित रहा है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: भारत ने एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप में प्रवेश कर लिया है। भारत ने ताशकंद में कल अंतिम क्वालिफाइंग मुकाबले में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर 20 वर्षों में पहली बार इस प्रतियोगिता में जगह बनाई। एएफसी अंडर 20 एशिया कप अगले वर्ष 24 मार्च से 10 अप्रैल तक चीन में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर में 2 दिन के भव्य लोक महोत्सव का समापन कल शाम रामबन जिले में हुआ। महोत्सव में पहाड़ी समुदाय की समृद्ध लोक परंपराओं, सांस्कृतिक विरासत और जातीय पहचान का प्रदर्शन किया गया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लोक अदालत त्वरित, किफायती और सुलभ न्याय विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता हमारे टेलीफोन नंबर 0112331481, 0112371717 और 0112331444 पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
10: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
11: धन्यवाद सरफिरोजी। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। अमर उजाला ने गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान को दिया है नक्सलवाद खत्म।

0: किया, देश को अब ड्रग्स मुक्त बनाएंगे। ड्रग्स मुक्त युवाओं से 2047 में विकसित भारत का नेतृत्व करने का आह्वान। नवभारत टाइम्स ने विदेश मंत्रालय के इस कथन को सुर्खी बनाया है, पूरा जम्मू कश्मीर हमारा, नक्शे में यही दिखे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के समान क्षेत्रफल वाले मानचित्र के प्रस्ताव का समर्थन किया। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, भारत की अखंडता और संप्रभुता से कोई समझौता नहीं। हिंदुस्तान के अनुसार भारत ने बाल विवाह और जबरन विवाह रोकने के लिए 27 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का भी समर्थन किया। दैनिक भास्कर ने अपने आर्थिक पन्ने पर लिखा है, महिलाओं के काम पर जाने से घरों में बराबरी बढ़ी। एक शोध के अनुसार महिलाओं के नौकरी करने का असर सिर्फ परिवार की आय पर नहीं पड़ता, घर में उनकी स्थिति भी बदलती है। 2025 की एक श्रम सेवा रिपोर्ट के अनुसार भारत में 100 में से 39 महिलाएं काम कर रही हैं। दिल्ली में 10,000 स्टार्टअप से 4,00,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार, पंजाब केसरी की सुर्खी है। दिल्ली सरकार ने स्टार्टअप और इंक्यूबेशन नीति की घोषणा की। दैनिक भास्कर लिखता है, नए विचारों और उद्यमशीलता को गति देने के लिए सरकार की बड़ी पहल, स्टार्टअप पॉलिसी के लिए 400 करोड़ का बजट। कई अखबारों ने अपने खेल पृष्ठ पर सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की पहली चाइना बैडमिंटन टूर्नामेंट खिताबी जीत को सचित्र प्रकाशित किया है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर आधारित होने के कारण खास बताया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए, इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। इसरो ने कहा, अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों का उद्देश्य एक व्यापक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र बनाना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गोवा के पणजी में आज पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। और भारत ने ताशकंद में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर AFC Under-20 फुटबॉल एशिया कप के लिए क्वालिफाई किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इज स्पेशल बिकॉज इट रेस्ट्स अपॉन स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग कल्चरल एंड पॉलिटिकल कनेक्शंस। Delhi Chief Minister Rekha Gupta orders magisterial inquiry into Satya Niketan building collapse incident. FIR lodged against building owner. ISRO says space sector reforms are aimed at creating larger, stronger and globally competitive Indian space ecosystem, and it should be seen as ecosystem expansion and capability multiplication rather than privatization. Union Home Minister Amit Shah to chair 20th meeting of the Western Zonal Council at Panaji in Goa today. OPEC Plus countries decide to keep oil production target for October unchanged. And in football, India qualify for AFC Under-20 Asian Cup after 20 years following 3-0 victory over Bangladesh in Tashkent. Prime Minister Narendra Modi has said that over the past several years, the relationship between India and France has reached new heights. He said together with President Macron, both countries are building a special global strategic partnership. Speaking during inauguration of the Swami Narayan Hindu Mandir in Paris through video conferencing, Mr. Modi said from technology, AI and defense to space and climate action, both nations are moving forward together with new momentum and renewed energy. He said both sides are also celebrating this year as the India-France Year of Innovation. The Prime Minister said the India-France strategic partnership is special because it rests upon the strong foundation of the long-standing cultural and political connections.
3: बीते वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। मेरे मित्र प्रेसिडेंट मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना रहे। टेक्नोलॉजी, एआई और डिफेंस से लेकर स्पेस और क्लाइमेट एक्शन तक हम एक नई गति और नई ऊर्जा के साथ मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं। हम 2026 को इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के रूप में भी सेलिब्रेट कर रहे हैं।
2: He said history bears witness to the sacrifices of the Indian soldiers in France, a history that continues to live in the collective memory and hearts. Mr. Modi said those interested in languages also know the important role French scholars have played in promoting and popularizing Sanskrit. He added that now, through the magnificent BAPS Swaminarayanan Temple, a new chapter has been added to the India-France deep cultural relationship.
3: BAPS के माध्यम से जब अलग अलग देशों में मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो वहाँ भारत के प्राचीन विचार और मानवीय मूल्य भी साथ साथ ही जाते हैं और भारत का विचार कहता है समानम मनः सहचित्तमेषां अर्थात हमारे मन समान हो हमारे हृदय साथ जुड़े इसलिए आज जब फ्रांस में इतना भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है ये फ्रांस की विविधता को तो समृद्ध करेगा ही इससे भारत और फ्रांस के सांस्कृतिक संबंधों को भी ऊर्जा मिलेगी
2: Delhi Chief Minister Rekha Gupta has ordered a magisterial inquiry into the building collapse incident in Satyaniketan area of New Delhi and directed registration of an FIR against the building owner. The Chief Minister's office said the decision was taken following an on-site review and a preliminary assessment of the incident. The CMO said those found responsible for the grave incident will be held fully accountable and dealt with under the strictest provisions of law. Death toll in the incident has risen to 6 following the recovery of one more body late last night. Search and rescue operations continued at the site as teams worked to clear the debris and look for any trapped person. Teams from the NDRF, Fire Service, Delhi Police and other agencies are working at the site to clear the debris. Union Home Minister Amit Shah spoke to Delhi Chief Minister, Delhi Police Commissioner and Director General of NDRF and assessed the situation on the ground. Mr. Shah said the injured have been provided with all necessary medical assistance. The building was been used as a paying guest accommodation. A senior police officer said repair work was underway in the basement when the structure collapsed at around 1:30 p.m. yesterday. Sri Venkateshwara College of the University of Delhi will remain closed today in the wake of the tragic building collapse. The All India Institute of Medical Sciences, AIIMS, said that it received 11 patients who sustained injuries in the building collapse at Satyaniketan in New Delhi. Of the 11 patients, 5 were brought dead to the trauma center, while another patient who was in critical condition later succumbed to his injuries. According to the AIIMS, 3 patients have been admitted and are undergoing treatment. One patient underwent limb surgery, while another who sustained minor injuries was discharged after being kept under observation. Indian Space Research Organization ISRO has issued a clarification and report circulating in the media regarding the speculations and misinformation that there is an attempt to privatize ISRO or reduce its role. In a social media post, ISRO said that it will neither be privatized nor will its importance be diminished. It added that participation of the private sector in space is aimed at enabling ISRO to focus even more strongly on the next generation of India's space program, while industry scales up mature technologies and capabilities. ISRO said the space sector reforms aim to create a larger, stronger and globally competitive Indian space ecosystem. It said the reforms should therefore be seen as ecosystem expansion and capability multiplication rather than privatization. Union Home Minister Amit Shah will chair 20th meeting of the Western Zonal Council at Panaji in Goa today. The meeting has been organized by the Interstate Council Secretariat of the Ministry of Home Affairs, MHA, and hosted by the Goa government. The Western Zonal Council comprises Goa, Gujarat and Maharashtra, along with the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu. We have more from a correspondent.
4: Chief ministers and senior ministers of Goa, Gujarat and Maharashtra, along with the representatives of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, will participate in the meeting. The council provides a structured platform to discuss issues affecting two or more states or the center and states together and strengthen mutual cooperation. Matters requiring coordinated action and those remaining unresolved at the official level can be taken up for consideration. Later, Amit Shah will present the President's Police Colour to Goa Police. Nikhil Upadhyay, Akashwani News, Panaji.
2: This is Akashwani giving you the news.
5: For news and updates anytime, anywhere, follow us on X at AIR News Alerts and on Facebook at All India Radio News.
2: The 7 core OPEC plus countries, Saudi Arabia, Russia, Iraq, Kuwait, Kazakhstan, Algeria and Oman, met virtually yesterday to review global market conditions and outlook. They decided

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपका मनमीत आरजे अमित और आप सभी का तहे दिल से स्वागत कर रहा हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम में। मस्त मुंबई 8:40 से लेकर 10 बजे तक आप सुनते हैं और 10 बजे के बाद नमस्ते भारत में हमारे संग बने रहते हैं। 8657661071 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके मैसेजेस का इंतजार कर रहा है। लेट मी नो हमारे संग कौन कौन जुड़ा है, क्योंकि मैं आपसे जुड़ने के बाद काफ़ी मुस्कुराता हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हंसते हुए लोगों की संगत इत्र की दुकान जैसी होती है, कुछ ना भी खरीदो तो भी रूह को महका देती है। आरजे अक्सर कहता है ना, बिखरने के लाखों बहाने मिल जाएंगे, आओ हम जुड़ने के अवसर ढूंढे। तो आइए, जुड़ तो गए। गुड मॉर्निंग आप सभी को आरजे की ओर से।

मस्त मुंबई शो के आज के मस्ताने इस सेगमेंट में आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत कर रहा हूं। देखो हर दिन वैसे ऊर्जा से भरा हो ऐसी हमारी सोच तो रहती है, मगर वीकेंड के बाद आने वाला सबसे पहला मंडे यार बिस्तर से उठने का मन नहीं करता, मगर हम चाहते हैं आप कुछ इस कदर उठे कि पूरा वीक आपके लिए सदाबहार हो। और उसकी शुरुआत अगर एफएम रेनबो के मस्त मुंबई शो के साथ आरजे अमित के साथ हो तो बात बने। आप भी हमें बताएं कि किस तरह आप इस वीक को मनाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ कहानियां लेकर आता है और कुछ कहानियां अतीत में छोड़ जाता है, इतिहास में अपना नाम दर्ज कराती हैं कुछ बातें कुछ घटनाएं। आज हम चाहते हैं ऐसी कुछ कहानियां आप सभी से साझा करें। फिलहाल एक गाना आप सभी के लिए मैं सुनाना चाहूंगा, क्योंकि आपसे मिलने के बाद मेरा मन क्या करता है आपसे मिलने के बाद मेरा मन आपके लिए ये गाना चाहता है, आशा भोसले और सुरेश वाडकर की आवाज में।

सात सितंबर आज एक ऐसी तारीख जिसमें अगर 2019 में झांक के देखें तो पता चले कि इसी दिन एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारत के नाम दर्ज होते होते रह गई यार। आप कहेंगे ऐसी कौन सी उपलब्धि है, तो बताना चाहेंगे कि भारत इतिहास में नाम दर्ज कराने से चूक गया। हम बात कर रहे हैं चंद्रयान 2 अभियान की। उस दिन भारत ने लैंडर विक्रम को चांद पर उतारने की कोशिश तो की थी, लेकिन चांद की सतह से महज 2.1 किलोमीटर दूर लैंडर का इसरो कंट्रोल रूम से संपर्क टूट गया और इतिहास में जो बात दर्ज होने जा रही थी वो हमारे हाथों से चूक गई। आज 7 सितंबर के दिन भारत के कई सारे वैज्ञानिक इस बात को अगर याद करते हैं ना तो थोड़ा कहीं ना कहीं दुख होता है मन में। खैर 8:54 हो चुके हैं, आपसे गुजारिश है आप बने रहना FM रेनबो पर आपका मनमिदार जमीत के संग मस्त मुंबई में सुनते रहना आज के मस्ताने।

0: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: अपनी पसंद की कोई भी कार ले, कॉस्मोस कार लोन है ना?
2: कार लोन पर 3 करोड़ रुपए तक उपलब्ध, ब्याज दर 8% और अवधि 7 साल तक, शर्तें लागू।
1: सुहाना होगा सफर कॉस्मोस कार लोन के साथ।
2: आज ही नजदीकी ब्रांच में संपर्क करें, कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन करे समृद्ध।
3: अंकोर वाट विष्णुधाम कंबोडिया हेरिटेज यात्रा विश्वातील सर्वात मोठ्या मंदिराची एक अद्भुत अनुभूती।
4: 2 ते 10 डिसेंबर 2026 इतिहास, संस्कृती, वारसा, मंदिर स्थापत्य आणि परंपरा यांचा अनोखा संगम।
3: अंकोर थॉम, बयॉन, बांटी श्री सह 14 मंदिरे, नॅशनल म्युझियम, टोनले सॅप आणि विशेष आकर्षण अप्सरा नृत्य।
4: सोबत प्रख्यात लेखक व मंदिर स्थापत्य तज्ञ प्राध्यापक क्षितिज पाटुकले, शाकाहारी भोजन, 5-स्टार हॉटेल्स, आतापर्यंत 1200 अधिक जणांची कंबोडिया भेट।
3: विमान प्रवास, व्हिसा, सर्व खर्चासह 15 सप्टेंबर पर्यंत विशेष पॅकेज 1,40,000 रुपये फक्त।
4: ऑनलाइन बुकिंग साठी कंबोडिया अंकोर फाउंडेशन डोंबिवली, संपर्कासाठी फोन 98 21 40 38 38।
5: फोन पुन्हा एकदा 98 21 40 38 38।
6: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल। एफएम रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी सुन सकते हैं। मास मुंबई में मैं आपका मनमीत आरजे अमित पेरेक्वार आप सभी का तहे दिल से स्वागत कर रहा हूं। देखिए, वैसे 8:40 से 10 के बीच चलने वाले इस प्रोग्राम में हम कई सारी बातें आप सभी से शेयर करते हैं और शेयर करते करते बहुत सारे लोग भी हमारे संग जुड़ जाते हैं। देखते देखते कई सारे लोगों का काफिला बन जाता है, जैसे कि कल्पना राजू लासनगर से और रंजन हजारीबाग झारखंड से हमें मैसेज कर रहे हैं, और प्रणव शिंदे जी हैं ही जो कि हमारे संग अक्सर जुड़े रहते हैं, श्रीधर मुरत्कर, चंद्रकांत बोके फोड़े, प्रमोद कारखानिस, रजनीकांत पाटिल जी और रोहिणी नागरी जी आज अपना

जन्मदिन मना रही हैं उन्हें हम जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहेंगे। वासुदेव जी बदलापुर से हमारे साथ जुड़े हैं, विजेंद्र गटोल अकोला से, महेश बुहारा जी राजस्थान से, राकेश माथुर जी पुणे से, विश्वास चंदोरकर जी हैं, पंकज मोहट, फिरोज सिगानपुरिया, रामदास तांबे, सुरेश बावकर, श्रेय राउत, मिलेश राउत और उनकी पूरी फैमिली और प्रकाश शिंदे जी। मैं चाहूंगा जितने सारे लोग जुड़े हैं आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत कर रहा हूं, और कई सारे लोग सुनते तो हैं हाँ बट मैसेज नहीं करते, उनसे कहना चाहूंगा यार एक मैसेज से क्या होने वाला है, एक व्हाट्सएप मैसेज कर दो 8657661071 इस व्हाट्सएप नंबर पे, ताकि हमें पता चले कि आप भी हमारे संग जुड़े हुए हैं, है ना। चलिए इस अगले पल का आगाज करते हैं इस बहुत ही प्यारे से गाने के साथ।

दिल अगर गाता रहेगा और हर किसी को एंटरटेन करने में लगा रहेगा तो समय कैसे बीतता चला जाता है पता ही नहीं चलता। अब देखिए 7 सितंबर ये तारीख एक बहुत ही जाने माने फिल्म मेकर के जन्मदिन के उपलक्ष में जुड़ी हुई है। आप कहेंगे कौन है वो? चेतना फिल्म के साथ फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक पहचान बनाने वाले फिल्म मेकर B.R. इशारा। 1964 से उन्होंने कई सारे फिल्मों की ओर रुख किया। आपको पता है एक बहुत ही जबरदस्त किस्सा है। ये इंसान कई सारे स्टार्स को पहला मौका देने वाला ठहरा, जैसे कि रेहाना सुल्तान, परवीन बॉबी, सलीम दुर्रानी, रीना रॉय, अनिल धवन, इन जैसे कलाकारों को बड़े बड़े अवसर तो दिए, साथ ही अमिताभ बच्चन, जया भादुड़ी और शत्रुघ्न सिन्हा, रजा मुराद, विजय अरोड़ा और राज किरण, इन जैसे कलाकारों के करियर के आरंभ में उन्हें बड़े अवसर देने में B.R. इशारा का जिक्र आज भी किया जाता है। और कई बार इस इंसान ने ऐसी ऐसी फिल्में दी हैं कि वो फिल्में आज तक हम सभी को एंटरटेन करती आई हैं। एक फिल्म की जुड़ी कहानी है। जब निर्देशक इशारा फिल्म जरूरत की शूटिंग के लिए ऑन द लोकेशन पनवेल गए थे, तब रीना रॉय इस फिल्म में काम करती थी। रीना बोलती बहुत कम थी, हंसती अधिक थी, और पनवेल को इशारा ने एक दृश्य विशेष के कारण चुना था, बताया। और दृश्य फिल्माते समय पृष्ठभूमि में एक रेलगाड़ी को गुजरते हुए दिखाना था। सामने ही रेलवे ट्रैक था, दिन में सवारी गाड़ी वहां से ही गुजरती थी। फिल्म की यूनिट ने खुले मैदान में कैमरा प्लेस कर रखा था और शॉट फिल्माने के लिए रेलगाड़ी के आने की प्रतीक्षा की जा रही थी। ऐसे बीच निर्देशक इशारा रीना रॉय को अच्छी तरह रिहर्सल कराने में जुटे थे ताकि शॉट ठीक से हो जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि उस गाड़ी के बाद शाम को ही दूसरी गाड़ी आती थी, इसलिए रीना रॉय को अच्छी तरह से समझा दिया गया था कि गाड़ी आते ही वे सामने वाली पहाड़ी की ओर भागेंगी। रीना रॉय ने भागकर अच्छी तरह रिहर्सल कर ली। निर्देशक को भी विश्वास हो गया अब दृश्य आराम से शूट हो जाएगा। जैसे ही रेलगाड़ी पटरी पर दौड़ती नजर आई, निर्देशक इशारा ने रीना को दौड़ने के लिए इशारा किया, मगर रीना का दौड़ना तो दूर, वे अपनी जगह से हिली भी नहीं। कैमरा चल रहा था, रेलगाड़ी भी ओझल हो गई। रीना गाड़ी को जाते देखती रही और हंस रही और निर्देशक इशारा ने सिर पकड़ लिया। शॉट खराब होने के कारण एक्ट्रेस को बहुत डांटा और आगे सही शॉट देने का इंतजार किया। फिर सवारी गाड़ी की प्रतीक्षा में शाम तक हर किसी को इंतजार करना पड़ा। देखिए हमें तो फिल्में दिखती हैं, मगर फिल्में शूट करने के पीछे कितनी मेहनत उस जमाने में करनी पड़ी थी जब इतनी तकनीक विकसित नहीं थी। आइए B.R. इशारा की कई सारी हिट फिल्में हैं, उन्हीं में से एक नज़र। उसमें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गाया ये अंदाज आज आप सभी के नाम हम कर रहे हैं। कीप लिसनिंग 107.1 FM रेनबो। किताब का

0: सब चाहते हैं अपना एक मनपसंद घर और सब चाहते हैं एक किफायती ब्याज दर।
1: कॉस्मोस होम लोन ब्याज दर 7.80% से शुरू।
0: 3 करोड़ रुपए तक का लोन उपलब्ध। कम से कम प्रोसेसिंग फीस 20 साल तक का अवधि।
1: शर्तें लागू। टोल फ्री नंबर 1800-233-0234।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक। जीवन बनाए समृद्ध।
2: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

हर दिन कहानियां होती रहती हैं, कहानियां घटती रहती हैं, मगर कुछ कहानियां जो होती हैं ना वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाती हैं। जैसे कि बिहार इशारा जी की जन्मतिथि के उपलक्ष्य में हमने उनके कुछ फिल्मों की कहानियां और उस दौरान फिल्में किस तरह शूट होती थी ऐसे किस्से आप सभी के साथ उजागर करने का प्रयास किया। मगर इस प्रयास में हमारे संग बहुत सारे नए नए लोग भी अब जुड़ने लगे हैं। जो जुड़े हैं सभी का मैं स्वागत करता हूँ और कहना चाहूँगा कि देखिए जिंदगी बड़ी छोटी है यार, कल की कोई गारंटी नहीं है। आपको पता है विमान परिचारिका नीरजा भनोट, उन पर एक फिल्म आई थी। नीरजा ने एक अपहृत विमान के यात्रियों को बचाने के दौरान अपनी जान गंवा दी थी और ये 1963 की बात है। आज उसी उपलक्ष्य में हम नीरजा जी को याद करना चाहेंगे और आपको बतलाना चाहेंगे कि कल की कोई गारंटी नहीं। नेपाल की बाढ़ में देखा हमने, जो कल की चिंता में लगे रहते हैं ना वो आज के पल को नहीं जीते, और जो आज के पल को नहीं जीते वो जिंदगी जी ही नहीं सकते, क्योंकि कल की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आरजे अमित का आपसे कहना है कि कल को भूल कर देखो और आज को जी कर देखो, कल को भूल कर देखो आज को जी कर देखो, आने वाला पल खुद ही संवर जाएगा। बस

भाई आने वाला पल तो जाने वाला है, ये तो बात तय है, मगर अब थाने से भिवंडी भी हम जाने वाले हैं, और वो भी मेट्रो से। थाने से भिवंडी और वसई की कनेक्टिविटी को बेहतर कराने वाले जो गायमुख पायगांव क्रिक ब्रिज है ना, उसका काम तेजी से हो रहा है, और 2027 के अंत तक ये काम तो जरूर पूरा हो जाएगा। मगर अब रफ्तार अगर वाहनों की बढ़ेगी ना, तो लोग मेट्रो से भी सफर करने के लिए तैयार है। यहाँ वहाँ कई सारे रोड लोगों को एक साथ कनेक्ट कर रहे हैं और सफर का समय बचा रहे हैं। हम भी चाहते हैं हमारा

ये सफर का समय जो बचा है ना आधे घंटे का, हेलो मस्त मुंबई का, तो उसे हम और कई गीतों के संग सेलिब्रेट करें। और आपको बतलाया कि किस तरह हमारे जीवन में कई सारे बदलाव होते रहते हैं और उन बदलावों को देखते देखते हमारी जिंदगी बीतती रहती है। अब देखिए, आपको याद होगा एक वो जमाना रहा जब गणपति के त्योहार की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और हम सब गांव की ओर निकलने लगते हैं। स्पेशली कोंकण में रहने वाले कई सारे लोग गांव में जाकर गणेश उत्सव मनाने के लिए तैयारी करते हैं। हाल ही में दही हंडी का फीवर हमने पूरे मुंबई में देखा। अब आने वाले त्योहार की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मार्केट में अब वो रंगीन फूल, सजावट का सामान, ये सब कुछ दिखने लगा है। आपके मन में क्या तैयारियां चल रही हैं हमें बतलाएं 8657661071 पर। तब तक हम आपका ये अंदाज देखकर आपके लिए कहना चाहेंगे, अरे जाने मन, तुम तो कमाल करते हो यार। बने रहना FM रेनबो पर मस्त मुंबई शो में आरजे अमित के संग।

बड़ा दुख होता है जब हम न्यूज़ में देखते हैं और फिर पता चलता है यार, एक तरफ दही हंडी के दौरान इतना एंजॉय करने वाले हमारे सारे गोविंदा यंगस्टर्स बच्चे और उनके सभी साथी एंजॉय तक करते हैं, कई सारे इनाम पाते हैं, ट्रॉफीज ले घर चले जाते हैं, बट जो जो जख्मी हो जाते हैं ना उनका बड़ा दुख होता है। दही हंडी उत्सव में घायलों की संख्या 383 पर पहुंच गई है और इस बार हमने ये भी देखा कि न सिर्फ खेलने वाले या सहभागी होने वाले लड़के घायल हुए हैं बल्कि कुछ देखने वाले भी घायल हो चुके हैं, गंभीर चोटें आई हैं, कई लोग अस्पताल में एडमिट हैं। हमें इस बात का बड़ा दुख होता है। हम भगवान से प्रार्थना करना चाहेंगे कि इस साहसी खेल में जितने सारे हमारे साथी शामिल हुए हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और उनकी सेहत वैसी हो जाए जैसे वे पहले तंदुरुस्त रहे। भगवान से चलो प्रार्थना करते हैं, सोमवार का दिन है, भगवान शंकर जी को प्रार्थना करते हैं इन सभी की अच्छी सेहत के लिए। और सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में गाया ये एक बहुत ही

राज कपूर साहब की ड्रीम फिल्म वो पूरी नहीं कर पाए और रणधीर कपूर ने उसे पूरा किया और हमें फिल्म हीना देखने मिली। ज़ेबा बख्तियार इनका अभिनय हिंदी फिल्मों में काफ़ी सराहा गया था और उसी फिल्म का ये गाना आप सभी ने सुना। 9:37 हो चुके हैं और बस कुछ ही पलों में 10 बज जाएंगे। 10 बजे आप हिंदी समाचार सुनेंगे। समाचारों के पार हम नमस्ते भारत में आप सभी को ले जाएंगे, मगर उससे पहले आइए जान लेते हैं एक और बात खास क्या है आज की तारीख से जुड़ी, तो बतलाना चाहेंगे। देखिए, वैसे भारत के पंकज अडवाणी, इन्होंने विश्व पेशेवर बिलियर्ड का खिताब 2009 में आज के दिन जीता था। और आपको पता है पी भानुमति रामकृष्ण, ये एक बहुत ज़बरदस्त अभिनेत्री गायिका हैं, संगीतकार हैं, उपन्यासकार हैं और तेलुगु सिनेमा की पहली सुपरस्टार माना जाता है इन्हें। आज ही उनका जन्म हुआ था। और तेलुगु सिनेमा में अगर पहली कोई महिला निर्देशक होगी तो वो पी भानुमति ही रही हैं। चंदी रानी ये फिल्म उन्होंने 1953 में डायरेक्ट की थी। बॉलीवुड

एक्ट्रेस राधिका आप्टे मराठमोळी मुलगी आपली, वो आज ही के दिन जन्मी है। तमिल, तेलुगु, हिंदी, मराठी फिल्मों में काम करती आई है और कई पुरस्कार भी जीती है, अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार और इसका नामांकन उनके नाम है। और वो इस तरह काम करने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री बनी हुई हैं, तो उनका भी हम जन्मदिन की उपलक्ष में ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहेंगे। और हमारे कई सारे श्रोता हैं जो आज शो तो सुन रहे हैं बट उनका भी जन्मदिन है, तो उन्हें भी हम हैप्पी बर्थडे कहना चाहेंगे। आरजे अमित की ओर से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ ही पलों में कई हमारे नए साथी जो जुड़े हैं ना, उनका भी मैं जिक्र करने वाला हूँ। फिलहाल मुझे लगता है कि एक ऐसा गाना सुना जाए जिस गाने के साथ हमें पता चले कि किस तरह इस गाने में क्लासिकल अंदाज के संग लता मंगेशकर की आवाज हमें राजस्थान में ले जाती है और बतलाती है वहां के

क्या बात है। सुबह सुबह ऐसा कोई क्लासिकल अंदाज सुना जाए और फिर हमें पता चले कि यार हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की धरोहर हमारे कई सारे कलाकारों ने कुछ इस कदर संजोई रखी है कि क्लासिकल महफिलों में जाने की जरूरत नहीं, फिल्मों के जरिए भी ऐसे कई सारे गीत हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं और फिर हमें बतलाते हैं कि वाह क्या बात है, क्या हमारा भारतीय फिल्म संगीत है ना। इसी संगीत पर प्यार करने वाले आप सभी आरजे अमित के साथ जुड़े हुए हैं एफएम रेनबो पर और सुन रहे हैं मस्त मुंबई शो। आज के मुस्ताने सेगमेंट में मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है जब ईशान किशन कैप्टनसी भी करते हैं और सेंचुरी भी जड़ देते हैं। 111 रन पर नॉट आउट रहते हुए संडे में दिलीप ट्रॉफी फाइनल के पहले दिन साउथ जोन की लचर फील्डिंग का फायदा उठाते हुए उन्होंने जबरदस्त बैटिंग करी और दिखला दिया कि ईशान किशन अब रुकने वाला बंदा है नहीं, है ना। दिलीप ट्रॉफी में भी हमारे ये सारे खिलाड़ी किस तरह काम कर जाते हैं ये देख के बड़ा अच्छा लगता है। और दूसरी तरफ सात्विक और चिराग की जोड़ी चीन की दीवार लांघने में सफल रही है। दो फाइनल गंवाने के बाद तीसरी कोशिश में भारतीय जोड़ी ने यह खिताब जीता हुआ है तो उन्हें भी हम ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहेंगे और उनके नाम कर देंगे ये गाना। आशा भोसले की आवाज़ में गाया ये गीत, थोड़ा पेपी है। होप यू विल एंजॉय।

आप पूछेंगे आप हमें क्या सुनाएंगे, हम वही सुनाएंगे जो आप पसंद करेंगे। जी हाँ, आरजे अमित अक्सर आप सभी की सेवा में हाजिर रहता है और वही सुनाता है जो आप पसंद करता है। तो बने रहना एफएम रेनबो पर आरजे अमित के संग। 10 बजे सुनिए हिंदी में समाचार और फिर मिलते हैं नमस्ते भारत में।

कई बार हमें ऐसे लगता है कि हम जो प्रोग्राम करते हैं ना, बस कुछ ही लोग सुनते हैं, मगर ऐसे नहीं होता। हमारे संग जुड़ने वाले लोगों की तादाद इतनी है ना, प्रमोद चिंचोलकर, प्रणव शिंदे और अगौरी वर्मा जी, अंगूरी वर्मा जी, दादर से बाबा प्रदीप अनंत कृष्णन, विजेंद्र घटोल, महेश बोहरा, वैदेही, स्नेहा और आर्यन सोमवंशी, भागेश पाटिल और बर्थडे गर्ल रोहिणी नागरे, वासुदेवन बदलापुर से, राकेश माथुर, सुरेश बावकर, शिवलक्ष्मी मुस्तकार, साथ ही धनराज गायकवाड़ नासिक से हमें सुन रहे हैं, और सुनील जंगम और पूरी जंगम फैमिली हमारे से जुड़ी है। आसाम से हितेंद्र दास हमें सुन रहे हैं, फिरोज सिगानपुरिया, विश्वास चांदोलकर, रजनीकांत पाटिल वाधवन से, और प्रमोद कारखाने से पंकज मोहोड़ हैं हमारे संग, बारशी से चंद्रकांत बोके फोड़े हैं, दीपाली शिरोडकर, महेश भाटकर, श्रेय राउत और प्रकाश वाघ पुणे से सुनते हैं, और साथ ही रंजन हजारीबाग झारखंड से हमें सुन रहे हैं, कल्पना राजू उल्लासनगर से, श्रीधर मोरसकर, यशवंत आडमुटे, सुरेश काशीनाथ पाटिल और धनोरकर, साथ ही हमारे महेश कुमार हजारे कोल्हापुर से हमारे संग जुड़े, गणेश पाटिल वाधवन से, चेतन कुमार जी हैं गया बिहार से, रामदास तांबे डोंबिवली से, और हमारे एक और लिसनर हैं जो अपना नाम बताते हैं, एडी कुलकर्णी, अशोक कुलकर्णी जी, जो कि पुणे से हमारे संग जुड़े हैं, माधव बाग जी हैं, वाग पुणे से हैं, और बाला साहेब कुंभार, अनुज बुआ, अनिल गावड़े बोरीवली घुराई से, और किशोर नाइक जी हैं। इतने सारे श्रोतागण हैं, हर किसी का जिक्र करना शायद मुमकिन नहीं। आदर्श कनौजिया मुंबई दादर से हैं, एन एस शेलार जी हैं और किशोर नाइक जी हैं, हर किसी का मैं स्वागत करता हूं। और आपको बतलाना चाहूँगा, ये आखिरी गाना गणपति बाप्पा का जो आगमन होने जा रहा है, बस उसी चाहत में हमारे मन में उनके प्रति बहुत ही ज़बरदस्त भावनाएँ हैं, और बापा का स्वागत करने के लिए हम सब हैं तैयार बड़े भक्ति भाव से। ये गाना बापा के नाम। मिलते हैं 10 बजे के समाचार के उस पार।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM रेनबो पर अब तक के प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल फ्रांस के पेरिस में स्वामी नारायण मंदिर का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। समाचार में आगे, नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में कल दोपहर एक बहुमंजिला इमारत ढहने से 6 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। समाचार में आगे, महाराष्ट्र के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने राज्य के सभी स्कूलों को केंद्र की स्कूल बैग नीति 2020 को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। नीति के तहत स्कूली बच्चों के बैग का वजन विद्यार्थियों के शरीर के वजन के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए हर वर्ष 10 बैग रहित दिवस आयोजित किया जाए। और समाचार के अंत में खबर है खेल जगत से जुड़ी। भारत ने बांग्लादेश को हराकर AFC अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप में प्रवेश कर लिया है। AFC अंडर 20 एशिया कप अगले वर्ष 24 मार्च से 10 अप्रैल तक चीन में खेला जाएगा। ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। अब आप सुन पाएंगे कार्यक्रम नमस्ते भारत।

हवाओं में एक अलग ही खनक महसूस हो रही है और आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा एक बेहद खूबसूरत सफर जिसका नाम है प्री जहां करी सदा। नमस्ते भारत का एक ऐसा सेगमेंट जहां हम रोज गुफ्तगू करते हैं, बट आज गुफ्तगू होती है हमारे मिट्टी की, हमारे देश के खुशबू की, जिसने पूरी दुनिया को सिर्फ और सिर्फ प्यार करना सिखाया है। तो चलिए थामिए अपनी धड़कनें और डूब जाइए अपनों के इस असीम प्यार में, क्योंकि ये मौसम बड़ा ही रंगीला है।

10:16 हो चुके हैं दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर नमस्ते भारत प्रोग्राम आपका मनमीत आरजे अमित के संग। देखिए, जब भी हम कहते हैं ना कि है प्री जहां की रीत सदा, तो मेरे तो आंखों के सामने रंग बिरंगी त्योहार आ जाते हैं, ढोल ढोलक की थाप और अपनों की वो मीठी सी मनुहार। और सितंबर का महीना शुरू हो चुका है, त्योहारों की सौगात लेकर जो आता है, जहां हर दिल बस झूम उठना चाहता है। हमारी रीति कुछ ऐसी है कि हम अजनबियों को भी गले लगाकर अपना बना लेते हैं, है ना। और इसी अपनेपन की मिठास को घोलते हुए आइए आज सुनते हैं हमारा अगला एक बहुत ही प्यारा सा नगमा, जो कि लैला मजनू इस 2018 में रिलीज हुई फिल्म से है, जो फिल्म आज के दिन रिलीज हुई थी। आतिफ असलम और ज्योति कटांगरी की आवाज में इस अंदाज को सुनते हैं। बने रहना एफएम रेनबो पर आपका मनमीत।

आज मूर्तियां टूटती जब हम देखते हैं और ये बातें सुर्खियां बटोरती है ना, तो हमें बड़ा दुख होता है। मगर राजेश एक ऐसी शख्सियत है जिनका नाम राजेश दिगंबर मायकेकर, जो मूर्तियों को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए अब अनोखा तरीका अपनाने लगे हैं। राजेश जी के मन में ये विचार तब आया जब उन्होंने मूर्तियां को टूटते हुए देखा। अब यूएस और कनाडा समेत अन्य देशों में राजेश की मूर्तियों की डिमांड बढ़ी है। पता है क्यों? वो मूर्तियां कैसे बना रहे हैं? वो मूर्तियां बनाते हैं टिश्यू पेपर से। आप सोचेंगे ये कैसे मुमकिन है, बट हाँ है। 2008 में गणपति विसर्जन के दौरान प्रतिमाओं को टूटते और क्षतिग्रस्त होते जब उन्होंने देखा तो बड़े नाराज हो गए और उन्होंने टिश्यू पेपर की मदद से 13 फीट ऊंची गणपति प्रतिमा तैयार की। शुरुआती असफलताएं जरूर थी, चुनौतियां थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने लगातार प्रयोग किया और ये प्रयोग जब जारी रहा तब उन्होंने बताया कि पीओपी की मूर्तियां आम तौर पर सांचे में तैयार की जाती हैं, 6-8 दिन सूखने में भी लग जाते हैं। वहीं टिश्यू पेपर से बनी प्रतिमा को तैयार करने में करीब 1 महीना लग जाता है और प्रतिमा को मजबूती देने के लिए पहले लोहे का ढांचा तैयार करते हैं, उसके बाद टिश्यू पेपर की परतें लगाई जाती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये बंदा कुछ अनोखा काम कर रहा है। 75 प्रतिमाएं इस साल बनाने का उनका लक्ष्य है और विदेशों से भी इसे काफ़ी डिमांड मिल रहा है। तो हम चाहते हैं राजेश ने है प्री जहाँ की री

सदा इस कार्यक्रम में अपने काम को लोगों के सामने लाने के लिए मुझे मजबूर कर दिया। तो हम चाहते हैं कि बस इनका काम लोग भी सराहे और उन्हें अच्छे अच्छे मौके जरूर मिलते रहे। आइए लता मंगेशकर की आवाज में एक बहुत प्यारा सा अंदाज सुनते हैं जो इसे पुराने फिल्म से है।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: सब चाहते हैं अपना एक मनपसंद घर और सब चाहते हैं एक किफायती ब्याज दर.
2: कॉस्मोस होम लोन ब्याज दर 7.80% से शुरू.
1: 3 करोड़ रुपए तक का लोन उपलब्ध. कम से कम प्रोसेसिंग फीस 20 साल तक का अवधि.
2: शर्तें लागू. टोल फ्री नंबर 1800-233-0234.
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक. जीवन बनाए समृद्ध.
3: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल. एफएम रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी सुन सकते हैं. दोस्तों, आज हमारे संग बहुत सारे श्रोता जुड़े हुए हैं. ये गाना सुनने के बाद कोई कहता है कि माँ अपने छोटे से बच्चे के साथ खेला करती हैं, तो ये गाना गाती है. बड़ा नटखट है कृष्ण कन्हैया. रंजन हजारीबाग झारखंड से हमें मैसेज करते हैं. वहीं प्रणव शिंदे कहते हैं कि मिट्टी को अपनी भक्ति से जो देते पावन रूप है, राजेश जी ही इस युग के असली नायक और अनूप है. पर्यावरण की रक्षा कर जो बापा को घर लाते हैं, सच्चे सेवक तो वही हैं जो धरा को स्वर्ग बनाते हैं. प्रकृति का श्रृंगार भी हो और बापा का सत्कार भी हो, राजेश जी की मूर्तियों में ऐसा अनुपम प्यार भी हो, दिखावे की इस दुनिया में जो मिट्टी से नाता जोड़ रहे हैं, वही हैं असली नायक जो प्रदूषण का रुख मोड़ रहे हैं. राजेश माइकेकर, इनके कार्य को दिल से सलाम करते हुए प्रणव शिंदे जी हमें याद दिलाते हैं कि नायक फिल्म रिलीज 7 सितंबर 2001 को हुई थी और उसे 25 साल पूरे हो चुके हैं. तो चलिए इसी बहाने उनकी ये इच्छा पूरी कर देते हैं और फिल्म नायक का ये गाना आप सभी के नाम करते हैं. Keep listening 107.1 FM Rainbow with आपका मनमीत आर्जे अमित.

चलिए एक काम करते हैं, आज मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आप मुझे जवाब देंगे 8657661071 इस नंबर पर, और बताएंगे कि क्या अगर आपको मौका मिला, गौर से सुनिए, अगर आपको कोई मौका मिला एक दिन सीएम बनने का, तो आपका क्या इरादा होगा, किस तरह आप ये सिचुएशन हैंडल करेंगे और क्या क्या सोच होगी आपकी, हम आपसे जानना पसंद करेंगे। बताइए हमें जल्दी, FM रेनबो पर आपके मैसेजेस का इंतजार रहेगा।

आपको पता है हमारे देश की सबसे अनोखी बात क्या है? यहाँ हर कुछ किलोमीटर पर पानी का स्वाद और बोलने की भाषा बदल जाती है, लेकिन नहीं बदलती है वो एक दूसरे के प्रति हमारी प्रीत। चाहे पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो या दक्षिण हो, हमारी धड़कनें एक ही सुर में धड़कती हैं। इसी अनेकता में एकता के खूबसूरत ताने बाने को सलाम करता हुआ ये शो मैं आपके नाम कर रहा हूँ। यहाँ हम कहते हैं ना कि मेहमान सिर्फ मेहमान नहीं होता, वो साक्षात ईश्वर का रूप होता है, अतिथि देवो भव। ये हमें हमारे बुजुर्ग सिखा गए ना, वो आज भी हमारे रग रग में बसती हैं बात। अपने घर आए किसी भी शख्स को हम खाली हाथ तो नहीं लौटाते, यही तो हमारी असली पूंजी है। तो ये मेहमान नवाजी संस्कारों की याद दिलाते हुए अगर हैप्री जहांगीर सदा इस सेगमेंट को आगे ले जाए, तो आपके जवाबों के साथ हर किसी ने अपनी अपनी बाटी हुई बात मैं हर किसी से शेयर करने वाला हूँ कुछ ही पलों में। मैंने पूछा था ना, अगर एक दिन के सीएम बनने का नायक फिल्म का कहानी का किरदार अगर आप निभाओ तो आप क्या करोगे? कई लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं। चलो कुछ ही पल बचे हैं, एक गाना सुनते हैं और उसके बाद जवाबों की ओर बढ़ते हैं। 8657661071 इस व्हाट्सएप नंबर पर बताइए आपके जवाब। तब तक सुनिए फिल्म जवान का ये गीत जो आज ही के दिन रिलीज हुई थी कुछ सालों पहले, अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाज आप सभी के लिए। आरजे अमित एफएम रेनबो पर आपको सुना रहा है ये गाना।

हमारे सवाल के जवाब कई सारे लोगों ने दिए, हर किसी की राय अलग अलग है, बट कई लोगों के जवाबों में जो बात हम तक पहुंची है ना, वो मुझे बड़ा ही इंप्रेस कर गई। कुछ लोग कहते हैं शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था में कड़े और त्वरित सुधारों के लिए मैं प्रयत्नशील रहूंगा। कुछ लोग कहते हैं कि सबसे पहले तो जो पेड़ तोड़ते हैं ना वो मैं बंद करवाऊंगा। कुछ लोगों का कहना है कि चाहे जो कुछ भी हो हम खर्चे पर कंट्रोल करना चाहेंगे और साथ ही साथ महंगाई पर भी, और गरीब बच्चों के पढ़ाई के लिए हम कुछ ना कुछ डिसीजन ज़रूर लेना चाहेंगे। वसुधा को बचाने के लिए इको फ्रेंडली चीज़ों को प्रमोट करने के लिए कुछ लोग आगे आ रहे हैं। तो कुछ लोगों का कहना है भाई जो कुछ भी हो एक दिन का सीएम बनने के बाद मैं तो बस एंजॉय करूँगा। देखिए हर किसी की अपनी अपनी सोच है, मगर कई लोगों की सोच ऐसी भी होती है जो औरों को जीवन देती है। जैसे कि नीरजा भनोट ने 1963 में 63 लोगों को बचाकर उन्हें नया जीवन दिया था। आइए कविता सेठ की आवाज में फिल्म नीरजा का एक गाना सुनते हैं और नीरजा को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और एफडी के ढेर सारे विकल्प.
2: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक के लिए 7.10%, सीनियर सिटीजन के लिए 7.30% मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने शर्तें लागू.
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिच योर लाइफ.
3: चलिए दोस्तों, 10:56 होने आए और ठीक 11 बजे आप हिंदी में समाचार सुनेंगे और समाचार के उस पार आप अगले शो में हमारी नेक्स्ट आरजे वैशाली को सुनने वाले हैं. तो आप सभी से मैं आरजे अमित विदा ले रहा हूं. जल्दी अगली मुलाकात के लिए हम दोनों बेकरार हैं, मुझे पता है, हम भी और आप भी. तो बेसब्री से आप इंतज़ार कीजिएगा, हम भी करेंगे और जल्दी मुलाकात करेंगे. तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, बी हैप्पी एंड टेक केयर.

आज विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने दो यात्रियों के पास 484 चांदी के सिक्के और एक सोने का सिक्का जब्त किया। इनमें 134 चांदी के सिक्के पुरातात्विक महत्व के हैं। मुख्य समाचारों में आगे, न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी को बॉम्बे हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति त्रिपाठी फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायाधीश हैं। वे बॉम्बे हाईकोर्ट के 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। मुख्य समाचारों के अंत में, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स का खिताब जीत लिया है। ये इस प्रतियोगिता में भारत का पहला और इस जोड़ी का इस सत्र में दूसरा खिताब है। इसी के साथ इस घंटे के मुख्य समाचार समाप्त होते हैं। ब्रेक फ्री के लिए बने रहें 107.1 FM रेनबो पर।

आप सुन रहे हैं न्यूज ऑन AIR पर और FM पर 107.1 मेगाहर्ट्ज FM रेनबो। ये है आकाशवाणी मुंबई केंद्र से आप सभी के लिए प्रस्तुति, और साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर भी। दोस्तों, मैं हूं वैशाली और आज काफी दिन बाद हमारी रेडियो पर मुलाकात हो रही है और मुझे इतना अच्छा लग रहा है। आपको समझ में आ रहा होगा मेरी आवाज में जो जोश है उसी से कि मैं कितनी खुश हूं कि आज आप सभी से आखिरकार इतने दिनों बाद ढेरों बातें होंगी। सबसे पहले तो आप सभी जुड़े हुए हैं, इतना प्यार भेजते हैं, पूछते रहते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। दोस्तों, ब्रेक फ्री पर आज बातें क्या करूंगी, ये आपके जहन में जरूर सवाल आया होगा, है ना? तो देखिए ना दोस्तों, एक जमाना था जब सिर्फ स्त्री ही नहीं पुरुषों पर भी पाबंदियां थी और स्त्रियों पर तो बहुत ज्यादा। आज मैं बात करने वाली हूँ हिंदी सिनेमा की एक ऐसी जाबाज और महान महिला की जिन्होंने आज से 90 साल पहले फिल्म इंडस्ट्री के सबसे कड़े नियमों को तोड़कर एक नया इतिहास रचा था। बात 1930 के दशक की है जब भारतीय सिनेमा में महिलाओं का आना तो दूर, हमारे संगीत सीखने पर भी समाज पाबंदी लगाता था। ऐसे रूढ़ीवादी दौर में एक पारसी लड़की ने बॉम्बे टॉकी स्टूडियो के कड़े नियमों और समाज की धमकियों को ठुकराकर भारत की पहली महिला संगीतकार बनने का गौरव हासिल किया। आइए जानते हैं संगीत की उस बेबाक जादूगरनी सरस्वती देवी की सच्ची दास्ता आज ब्रेक फ्री में, क्योंकि देखिए इतने बंधन, इतनी कठिनाइयां और इन सब के बावजूद कैसे कर पाई सरस्वती देवी। अगर आप सोचे बहुत ज्यादा गहराई से तो आपको ये महसूस होगा कि ये कितना ज्यादा मुश्किल रहा होगा कि उन्हें अपना नाम तक बदलना पड़ा। जी हाँ, उनका नाम क्या था, बस पता करने के लिए आपको बने रहना होगा, ट्यून इन रहना होगा। मैं हूं वैशाली और आप सभी का फिर एक बार दिल से स्वागत है 107.1 FM रेनबो पर, म्यूजिकली योर्स।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का 107.1 FM रेनबो और ब्रेक फ्री चल रहा है। दोस्तों ब्रेक फ्री में आप सभी को कहानी सुनवाने वाली हूँ सरस्वती देवी इनकी। और आपको पता है क्या कि ये इनका असली नाम भी नहीं था। दोस्तों सरस्वती देवी का असली नाम खुर्शीद मिनोचर होमजी था। जब उन्होंने बॉम्बे टॉकीज के बैनर तले फिल्मों में संगीत देना शुरू किया तो समाज के ठेकेदारों ने तहलका मचा दिया कि हमारे सम्मानित घराने की बेटी फिल्मों में बाजा कैसे बजा सकती है। विरोध इतना बढ़ा कि उनकी फिल्मों का बहिष्कार करने की धमकियां दी जाने लगी। लेकिन इस जाबाज संगीतकार ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी पहचान छुपाने के लिए अपना नाम बदलकर सरस्वती देवी कर लिया, पर अपने सुरों से कभी समझौता नहीं किया। उन्होंने उस दौर के सुपरस्टार अशोक कुमार और देविका रानी जैसे नॉन सिंगर्स से स्टूडियो में लाइव गाना गवाकर पूरी इंडस्ट्री को हैरान कर दिया। ऐसी थी सरस्वती देवी, या कहे खुर्शीद मिनोचर होमजी। ये इतनी अलग महिला थी और इनमें जो जज्बा था, जो हिम्मत थी, जो ताकत थी, सोचिए क्या कमाल की थी। और आपको बता दूं उन दिनों बॉम्बे टॉकीज जो है एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशंस पर चलने वाला स्टूडियो हुआ करता था, अपने आप में अलग हटकर नायाब। इसके बावजूद सारी चीजों को संभालते हुए सरस्वती देवी अपने लाइफ में, करियर में आगे बढ़ती रही और सच में मुड़कर कभी नहीं देखा। सच में क्या गजब बात है ये, है ना। बने रहे, सुनते रहे सरस्वती देवी की कहानी 107.1 FM रेनबो पर, म्यूजिकली योर्स।

0: कभी लगता दूर है,
1: ये दूरियां
2: तो कभी लगता पास है।
1: मेरे, मेरे पास तो है ना।
3: रंगों में न जाने क्या बात है,
1: पल पल रंगते रंगते रंगते रंगते
2: दिल जो उठा है अचानक ऐसे,
0: जैसे कोई हर वक्त दिल के पास है।
4: ये मजा रंगों का है, सुमधुर गीतों का है,
2: क्योंकि ये है आपका अपना
3: 107.1 FM रेनबो, दिल से
2: दिल तक।
5: ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। दिस इज द ब्रिक्स 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work

0: Together, possibilities become progress.
1: आपकी प्रॉपर्टी आएगी आप ही के काम. रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी पर लोन उपलब्ध.
2: प्रॉपर्टी मॉर्गेज लोन, टर्म लोन और कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध.
1: इंटरेस्ट रेट 9.25% से शुरू. महिलाओं के लिए ब्याज दर में छूट. शर्तें लागू.
3: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन करे समृद्ध.
4: अंकोर वाट विष्णुधाम कंबोडिया हेरिटेज यात्रा विश्वातील सर्वात मोठ्या मंदिराची एक अद्भुत अनुभूती.
5: 2 ते 10 डिसेंबर 2026. इतिहास, संस्कृती, वारसा, मंदिर स्थापत्य आणि परंपरा यांचा अनोखा संगम.
4: अंकोर थॉम, बयॉन, बांटी श्री सह 14 मंदिरे, नॅशनल म्युझियम, टोनले सॅप आणि विशेष आकर्षण अप्सरा नृत्य.
5: सोबत प्रख्यात लेखक व मंदिर स्थापत्य तज्ञ प्राध्यापक क्षितिज पाटुकले. शाकाहारी भोजन, 5-star हॉटेल्स, आतापर्यंत 1200 अधिक जणांची कंबोडिया भेट.
4: विमान प्रवास, व्हिसा, सर्व खर्चासह 15 सप्टेंबर पर्यंत विशेष पॅकेज 1,40,000 रुपये फक्त.
5: ऑनलाइन बुकिंग साठी कंबोडिया अंकोर फाउंडेशन डोंबिवली. संपर्कासाठी फोन 98 21 40 38 38.
6: फोन पुन्हा एकदा 98 21 40 38 38.

आप सुन रहे हैं ब्रेक फ्री 107.1 एफएम रेनबो पर और बातें हो रही हैं सरस्वती देवी इनकी, जिन्होंने कितना कुछ मैनेज करके एडजस्ट करके अपने करियर में आगे बढ़ने का ठाना था तो वो कर दिखाया। दोस्तों, सरस्वती देवी जो म्यूजिक कंपोजर थी, सिर्फ धुने ही नहीं बना रही थी बल्कि वो फिल्म संगीत की तकनीक को भी बदल रही थी। उन्होंने ही बॉम्बे टॉकीज में प्लेबैक सिंगिंग यानी पार्श्व गायन की आधुनिक तकनीक को बढ़ावा दिया, जिससे आगे चलकर अनगिनत महिला गायिकाओं के लिए स्टूडियो में जो है स्टूडियो के दरवाजे खुल गए। स्टूडियो में पहले से गाना रिकॉर्ड करने की आजादी भी इन महिलाओं को मिली और भाई जो है धीरे धीरे जो है सारी चीजें बदलती गई। पार्श्व गायन से सोचिए कितने सारे गायक गायिकाओं को मौका मिला और ये हमारे सामने आए और इतने सुपरहिट रहे। तो दोस्तों, ये सारी कई बातें हैं सरस्वती देवी के बारे में जो बहुत ही अलग और गजब रही। देखिए, इससे आगे कितना कुछ धीरे धीरे बदला और ये जब गाने रिकॉर्ड होने लगे, हमें मिलने लगे, तो हम अपने घरों पर भी रिकॉर्ड पर सुन सकने लगे, ये सुनने लगे हम सभी। और रेडियो पर तो है, बजता ही था गाना, लेकिन देखिए अपना रिकॉर्ड घर पर होना और उसे सुन पाना, ये वाकई एक उपलब्धि से कम बात नहीं थी। दोस्तों, इतना ही नहीं, साल 1936 में आई फिल्म जन्मभूमि के लिए उन्होंने भारत का पहला सिनेमाई देशभक्ति गीत जब जब जननी जन्मभूमि कंपोज किया था। इस गाने ने उस समय आजादी के दीवानों में ऐसा जोश भरा कि ब्रिटिश हुकूमत के सेंसर बोर्ड को इस गाने पर पाबंदी लगाने के रास्ते ढूंढने पड़े। ऐसे एक एक इन्होंने कमाल की चीजें की और इतनी उपलब्धियां हैं इनके नाम, ये कहां से शुरू करें और कहां पर खत्म। सोचिए वो लड़की जिसे अलाउड नहीं था म्यूजिक कंपोजर बनना, संगीत में यानी फिल्म इंडस्ट्री में, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बतौर म्यूजिक कंपोजर काम करना, उस लड़की ने, उस महिला ने इतना कुछ कर दिखाया। और भी बातें करेंगे हम सरस्वती देवी के बारे में और इनके कमाल के काम के बारे में और जो एक तरह से धरोहर छोड़ गई हैं उसके बारे में भी। बहरहाल, आप सभी के लिए दो और खूबसूरत गीत, बने रहे, सुनते रहे 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

ब्रेक फ्री चल रहा है 107.1 एफएम रेनबो पर। दोस्तों, हमने बातें की सरस्वती देवी के बारे में और किस तरह जिस जमाने में वो बड़ी हो रही थी, किस तरह की पाबंदियां थी और लड़कियों के लिए, खास करके सम्मानित प्रतिष्ठित परिवार के लड़कियों के लिए हिंदी फिल्म जगत में अपने लिए कोई भी जगह बनाना तकरीबन नामुमकिन था। तो दोस्तों, ऐसे में देखिए, कितनी सारी पाबंदियों के बावजूद जो है सरस्वती देवी ने अपना नाम बनाया। इतना ही नहीं, उन्होंने बहुत सारी चीजें बदल दी, नई चीजें वो ले आई। और देखिए, सारी रूढ़ियों को उन्होंने एक एक करके तोड़ दिया। बात ये नहीं होती दोस्तों के नियमों को और जो रूढ़ियों को, परंपराओं को तोड़ना है, लेकिन बात ये है कि जब कोई चीज अच्छे के लिए हो तो बिल्कुल परंपराओं को तोड़ना ही चाहिए। दोस्तों, आज जब एक महिला आरजे के रूप में मैं अगर अपनी बात करूं और बाकी महिलाओं की भी, तो इस माइक पर बेबाकी से अपनी बात रख पाती हूं मैं, तो मुझे गर्व होता है कि इसकी पहली नींव एक तरह से सरस्वती देवी ने रखी थी। उन्होंने उस जमाने में स्थापित पुरुष प्रधान नियमों को तोड़कर साबित कर दिया कि सुर, कला और नेतृत्व किसी जेंडर के मोहताज नहीं होते, स्त्री पुरुष होने के मोहताज नहीं होते। उनके बनाए जाने पर ये जो होता है ना प्रॉब्लम, वो यही होता है, दिक्कत ये होती है कि स्त्री आगे बढ़ नहीं पाई या पुरुष ने उसको बढ़ने नहीं दिया, लेकिन एक स्त्री ने हिम्मत करके इस पूरे बात को ही बदल दिया। तो सवाल ये नहीं होता कि आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, सवाल ये होता है कि आप एक इंसान हैं और एक इंसान को उसे जो करना है, जो सही है, उसकी आजादी मिलनी ही चाहिए। दोस्तों, उनके बनाए गाने आज भी भारतीय संगीत के सुनहरे पन्नों में अमर हैं और हम सभी महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। तो दोस्तों, सरस्वती देवी की इस बेमिसाल और सच्ची संगीतमय कहानी के बाद, चलिए उनके फिल्म का कंपोज किया हुआ एक सदाबहार गीत भी आपको आखिर में सुनवाऊंगी, क्योंकि काफी पुराना गाना है इस वजह से। तो बने रहें, सुनते रहें 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का 107.1 FM रेनबो। बहुत जल्द दोस्तों आप सुन सकेंगे हिंदी में मुख्य समाचार, यानी कि ठीक 12 बजे, जिसके बाद होगा म्यूजिक कैफे शुरू। और म्यूजिक कैफे में भी आप सभी के लिए कुछ खास ले आई हूँ। और ब्रेक फ्री में दोस्तों हमने बात की किस तरह से समाज की रूढ़िवादी सोच और परंपराओं से जो है सरस्वती देवी ने ब्रेक फ्री किया। हालांकि ये बात स्त्री पुरुष की ही हो ऐसा नहीं होता, अक्सर धीरे धीरे रहते रहते समाज वैसा बन जाता है। जब तक कोई अच्छे के लिए पुराने, थोड़े से गलत या मैं कहूंगी अनफेयर से नियमों को नहीं बदलता, तब तक ये चीजें चलती रहती हैं। तो हमें जरूरत होती है किसी न किसी चेंज मेकर की, एक ऐसे इंसान की जो एक तरह से नए नियम, नई परंपराएं और नई बातें, नई चीजें स्थापित करे। इसलिए कहते हैं ना, बदलाव बहुत मुश्किल होता है लेकिन बहुत जरूरी होता है। और बदलाव जब आता है तब क्रांति आती है ना। और क्रांति से होता क्या है, जब क्रांति किसी अच्छे चीज के लिए होती है तो बहुत ज्यादा बहुत सारे लोगों का उद्धार करती है। इसलिए भी ब्रेक फ्री करना जरूरी होता है कि आप अपना और दूसरों का उद्धार कर सके, है ना। तो चलिए आपको सुनवाती हूँ एक और गाना, और मेरे ख्याल से सिर्फ एक गाना आपको सुनाया जा सकता है इस समय में। और फिर जैसे कि मैंने आप सभी से साझा किया मुख्य समाचार और फिर म्यूजिक कैफे, मैं हूं वैशाली, आप सभी के साथ बनी रहूंगी दोपहर के 2 बजे तक। बने रहें, सुनते रहें 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: 12:30 हो चुके हैं और आइए इस घंटे के मुख्य समाचारों पर एक नजर डालें। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मीडिया की उन अटकलों और गलत सूचनाओं पर स्पष्टीकरण जारी किया है जिनमें इसरो के निजीकरण या उसकी भूमिका कम करने के प्रयासों की बात कही गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में इसरो ने कहा कि न तो उसका निजीकरण और न ही उसका महत्व कम किया जाएगा। समाचारों में आगे, अफगानिस्तान में आज सुबह 5:36 पर

निफ्टी ने आज 14 अंक यानी फिसलकर 23,883.15 अंक के स्तर से कारोबार शुरुआत की। इसी के साथ इस घंटे के मुख्य समाचार समाप्त होते हैं। म्यूजिक कैफे के लिए बने रहें 107.1 FM रेनबो पर।

आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो आकाशवाणी मुंबई केंद्र से न्यूज ऑन AIR आप और FM पर भी। साथ ही साथ आप हमें सुन पा रहे हैं 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर भी। म्यूजिक कैफे शुरू हो चुका है दोस्तों, जैसे कि आप सुन ही रहे हैं, और कई सारी बातें संगीत से जुड़ी हम करते हैं आप सभी से इस घंटे। दोस्तों, जब चांदी की पायल में बंधे छोटे छोटे घुंघरू आपस में टकराते हैं तो सिर्फ आवाज नहीं निकलती, एक पूरी की पूरी कविता जन्म लेती है, एक गाना तराना बन जाता है। हमारे संगीत ने इस छमछम और रुनझुन को अमर कर दिया है, फिर वो चाहे टीन की छत पर पायल के घुंघरुओं से बरसात की बूंदे गिर रही हो, या चाहे पग के मोटे मोटे घुंघरू। तो चलिए आपको सुनवाते हैं कुछ ऐसे ही झनकार भरे गीत आज म्यूजिक कैफे में 107.1 FM रेनबो पर, म्यूजिकली योर्स।

0: दोस्तों म्यूजिक कैफे चल रहा है 107.1 एफएम रेनबो पर और आप सभी के लिए हम रुंझुन और छुनमुन और रिमझिम के तराने ले आए हैं, तो बने रहे, सुनते रहे 107.1 एफएम रेनबो, म्यूजिकली योर्स।
1: धन्यवाद।

म्यूजिक कैफे चल रहा है 107.1 एफएम रेनबो पर। दोस्तों, अगर गानों से घुंघरुओं की खनक हटा दी जाए तो क्या उन थिरकते कदमों की आवाज हमें भी थिरकने पर मजबूर कर सकेगी? और क्या छम छम छम गाते हुए बारिश में भीगने का वो मजा आ पाएगा? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, मैं जानती हूँ आपका दिल यही कह रहा है, कभी नहीं हो सकता ये। चलिए थोड़ी सी रुंझुन छुनमुन और रिमझिम सुन लेते हैं 107.1 FM रेनबो पर, म्यूजिकली योर्स।

दोस्तों, संगीत सिर्फ साजों में नहीं, हर चीज में संगीत छुपा होता है और हर दिल में कम एक गीत छुपा होता है जो कभी ना कभी निकल आता है। छत पर गिरती बारिश की बूंदों को ध्यान से सुनिए, या एक साथ ताल से ताल मिलाकर दौड़ते हुए घोड़ों की टापों की आवाज, सुरों और संगीत का ये जादू हम सब पर यूं ही हमेशा छाया रहे। म्यूजिक कैफे की यही कोशिश है।

अभी आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग। आप सुन रहे हैं 107.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी मुंबई केंद्र से FM रेनबो।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सबसे पहले सुनते हैं सुविचार। सफलता की राह में मुश्किलें तो आएंगी, पर जो इंसान हिम्मत नहीं हारता वही एक दिन अपनी मेहनत से परिस्थितियां बदल देता है। श्रोताओं, इसे हमें भेजा था सुंदरनगर हिसार हरियाणा से मोनिका खरलवा, पंकज, शिवम, नैन्सी, सुरेश खरलवा जी ने। आप सभी को उमंग कार्यक्रम की ओर से धन्यवाद। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने लिखा है, देश हमारा, शान हमारी, तिरंगा है हमारी पहचान। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू ने। उन्होंने लिखा है, नमस्कार, जब भी अगस्त का महीना आता है हमारा मन आजाद हिंदुस्तान के लिए अपना जीवन समर्पित कर देने वाले अनेकानेक स्वतंत्रता सेनानियों के चरणों में अनायासी नतमस्तक हो जाने को लालायित हो जाता है। आपने 10 अगस्त से 14 अगस्त वाले सप्ताह में सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी, सरदार वल्लभ भाई पटेल सरीखे महान स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन वृत्तांत उमंग कार्यक्रम में शामिल करके मन को उत्साहित और जोश से भर दिया। समय अनुकूल कार्यक्रम पेश करना उमंग की पुरानी परंपरा है, हम इसके कायल हैं। आपकी पूरी टीम को धन्यवाद और आभार। आपका भी बहुत बहुत आभार संदेश भेजने के लिए। अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया, करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए लिखा है, अजीत जी और विमलेश जी नमस्कार, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी तरफ से भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की, तो आइए जानते हैं। हमारा पहला प्रश्न था, सम्राट अशोक किस वंश के सम्राट थे? इसका उत्तर है साथियों, सम्राट अशोक मौर्य वंश के सम्राट थे। हमारा अगला प्रश्न था, शहीद बालक बाजी राउत का जन्म कब और कहां हुआ था? इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। शहीद बालक बाजी राउत का जन्म 5 अक्टूबर 1926 को ओडिशा राज्य के ढेंकानाल जिले के नीलकंठपुर गांव में हुआ था। फिर हमने आपसे पूछा था कि जापान में पुरानी मशीनों को रिटायर करने की इस सामाजिक परंपरा से हमें क्या संदेश मिलता है? इसका उत्तर आप सबने अलग अलग ढंग से दिया था, लेकिन मूल उत्तर है, जापान में पुरानी मशीनों को रिटायर करने की इस सामाजिक परंपरा से हमें संदेश मिलता है कि हमें अपनी उपयोग की हुई पुरानी वस्तुओं के प्रति भी सम्मान और धन्यवाद का भाव रखना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न था, जापान के क्यू शिराता की रेलवे स्टेशन को कब बंद कर दिया, जहां से काना हराड़ा नाम की स्कूली बच्ची ट्रेन लेती थी? इसका उत्तर है साथियों, जापान की स्कूली छात्रा काना हराड़ा रोज क्यू शिराता के स्टेशन से स्कूल जाने के लिए ट्रेन लेती थी। ये स्टेशन मार्च सन 1918 को तब बंद कर दिया गया जब उस बालिका के स्कूल का अध्ययन पूरा हो गया। और हमारा अंतिम प्रश्न था, सेब की खेती करने वाले श्री सत्यानंद स्टॉक्स किस देश के, किस राज्य के निवासी थे? सत्यानंद स्टॉक्स संयुक्त राज्य अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य के फिलाडेल्फिया शहर के निवासी थे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए। और अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है, साइकिल का आविष्कार किसने किया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं, साइकिल का आविष्कार किसने किया था? और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, और प्रस्तुत है उमंग प्रसारण का मासिक संस्करण श्रोता संवाद।
0: नमस्कार श्रोताओं, उमंग कार्यक्रम के विशेष संस्करण श्रोता संवाद में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र अजीत। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रति माह हम आपके लिए लेकर आते हैं श्रोता संवाद, जिसमें हम करते हैं चर्चा शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और एनसीईआरटी की संयुक्त पहलों के बारे में। हमें पता है कि आपकी उत्सुकता बढ़ती जा रही है कि आज हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा। तो चलिए अब आपकी उत्सुकता शांत कर देते हैं। हमारी आज की चर्चा का विषय होगा शिक्षा में जेंडर समावेशन। तो श्रोताओं, इस क्रम में आज हमारे साथ विशेषज्ञ के रूप में स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर श्वेता तंवर। तो आपके बारे बता दूं कि आप एनसीईआरटी के जेंडर अध्ययन विभाग में सहायक प्रोफेसर हैं तो डॉक्टर श्वेता बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। तो सबसे पहले करते हैं चर्चा की शुरुआत इस प्रश्न के साथ कि जेंडर समावेशन से आपका क्या अर्थ है। दूसरे शब्दों में पूछूंगा, जब हम जेंडर शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसका तात्पर्य क्या होता है?
3: जी, इससे पहले कि हम जेंडर का अर्थ समझें, हमें लिंग और जेंडर के बीच का मूलभूत अंतर को समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। जहां लिंग जैविक विभिन्नताओं से संबंधित है, वहीं जेंडर एक सामाजिक अवधारणा है। जेंडर जैसे कि पुरुषत्व एवं स्त्रीत्व से जुड़ी विशेषताएं और व्यवहारों को संदर्भित करता है। जैसे किसी विशेष समाज में लड़कों लड़कियों, पुरुषों और महिलाओं के दृष्टिकोण, भूमिकाओं, उत्तरदायित्वों तथा व्यवहार को आकार देता है। जब हम जेंडर शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है कि समाज में सभी जो लिंग हैं, जैसे कि स्त्री पुरुष या फिर और भी जेंडर आइडेंटिटीज हैं,
0: बालक बालिका हो सकते हैं।
3: हाँ जी, बिल्कुल। और उसके अलावा हमारे ट्रांसजेंडर्स भी हैं। अभी जो नई शिक्षा नीति आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, वो ट्रांसजेंडर्स को भी इंक्लूड करती है।
0: तो आज का जो हमारा विषय था वो था जेंडर समावेशन, वो भी शिक्षा में। इसकी व्याख्या आप किस प्रकार से करेंगी?
3: जी, पहले तो हम बात करेंगे जेंडर इक्वालिटी की, जेंडर समानता की।
0: जी।
3: और उसके बाद फिर हम आएंगे शिक्षा के क्षेत्र में। तो जेंडर इक्वालिटी या फिर जेंडर समावेशन का अर्थ है जितने भी हमारे समाज में स्त्री पुरुष या फिर अलग तरह की जेंडर आइडेंटिटीज हैं, जैसे कि ट्रांसजेंडर, उन सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए, समान अवसर मिलने चाहिए तथा सम्मान मिलना चाहिए।
0: जी।
3: और उनको जितने भी हमारे

0: क्षेत्र है उन सभी में उनका पार्टिसिपेशन हर तरह से बराबर हो,
1: यानी उनकी भागीदारी या उनकी प्रतिभागिता बनी रहे।
0: हाँ,
1: आप ये कहना चाहते
0: जी,
1: हैं
0: जरूर। जी,
1: तो आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये होने जा रहा है और मुझे आशा है कि हमारे श्रोता भी इस प्रश्न के उत्तर के द्वारा बहुत संतुष्ट होंगे। तो मेरा दूसरा प्रश्न आपसे है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में जेंडर समानता को बढ़ावा देने के लिए एनसीईआरटी की क्या भूमिका है?
0: जी अजीत जी, ये प्रश्न अपने आप में ही बहुत महत्व रखता है आज के स्थिति में। अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो कि 6 साल पहले आई थी, आज अपना 6ठा वर्ष पूरा कर चुकी है
1: जी।
0: और इसी के चलते एनसीईआरटी भी इसके सालगिरह को मना रहा है
1: जी,
0: जैसा कि हम देख सकते हैं। और जेंडर इक्वालिटी और समावेशन के जो शिक्षा के मूल आधार हैं
1: जी,
0: उनको इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के स्तंभों में रखा गया है
1: जी,
0: ताकि हर वर्ग के छात्रों को समान अवसर मिल सके। और इस नीति का जो मुख्य उद्देश्य है वो स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक सभी हमारे जो बालिकाएं हैं, ट्रांसजेंडर समुदाय के जो लोग हैं, उन सब में बिना भेदभाव के सुरक्षित तरीके से तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है उसको सुनिश्चित किया जा सके।
1: तो डॉक्टर श्वेता, हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में, इसके विषय में कुछ और आप कहना चाहेंगी? यानी मेरा कहना है कि क्या इस पर कुछ और विस्तार आप देना चाहेंगी?
0: जी अजीत जी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जेंडर इक्वालिटी की बात करती है, बट उससे पहले जरूरी ये है कि जेंडर इक्वालिटी की बात करने की जरूरत क्यों पड़ी
1: जी।
0: तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी ये जो नीति है 2020 में आई, इन्होंने एक टर्म दिया सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स, जिसको भी हम ये भी कह सकते हैं सामाजिक व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो लोग,
1: या तो वंचित वर्ग भी कह सकते हैं,
0: वंचित लोग जो हैं। तो इसमें उन्होंने जेंडर आइडेंटिटीज को रखा, जैसे कि महिलाएं और ट्रांसजेंडर। दूसरा उन्होंने रखा सोशियो कल्चरल आइडेंटिटीज, जो कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिसमें कि एससी एसटी ओबीसी और हमारे माइनॉरिटीज भी आते हैं। इसके अलावा दिव्यांगजन भी हो सकते हैं, कुछ जो हमारे वर्ग ऐसे भी हैं जो भारत के दूर दराज इलाकों से आते हैं, तो उन तक भी संसाधनों की हमेशा जो है पहुंच नहीं हो सकी है पूरी तरह से। तो जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उन सभी को इंक्लूड करती है अपने उसमें,
1: उन सबको शामिल
0: करती
1: जी,
0: है
1: जी।
0: तो इसमें कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो जितनी भी हमारी बालिकाएं हैं, लड़कियां हैं या फिर ट्रांसजेंडर हैं, उन सभी को इन वर्गों में देखा जा सकता है। हमारी जो लड़कियां हैं वो एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज के सेक्शन से भी आती हैं, कहीं ना कहीं वो जो ज्योग्राफिकल आइडेंटिटीज हैं उनमें भी दूर से आती हैं, या दिव्यांगजनों में भी हमारी बहुत सारी लड़कियां होती हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी डीजीज की बात जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति करती है। अब प्रॉब्लम क्या थी या कंसर्न्स क्या थे, वो ये कि इन सभी के जो स्कूल छोड़ने की दर है हमारी जो लड़कियां हैं,
1: या
0: ड्रॉप आउट रेट्स जिसको हम बोलते हैं, तो उनमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई।
1: किनमें? लड़कों की संख्या में या लड़कियों की?
0: लड़कों के अगर हम कंपैरिजन में देखें तो लड़कियों के जो ड्रॉप आउट रेट्स में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है
1: जी।
0: उसके बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उन कारणों पर चर्चा की गई है, उनको इसमें शामिल किया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, और किस तरह से इन कंसर्न्स को, इन गैप्स को हम भर सके, इन पर काम कर सके, उसके बारे में कुछ प्रावधान और रणनीतियां दी गई हैं।
1: तो हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, अब हम ये जानना चाहेंगे विशेष करके श्रोताओं की ओर से मेरा प्रश्न ये होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसके लिए प्रावधान क्या क्या है?
0: जी, सबसे पहला और सबसे जरूरी प्रावधान जो है वो है सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट, जिसे कि हम ये कह सकते हैं
1: सुरक्षित वातावरण,
0: सुरक्षित बुनियादी जो ढांचा है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है
1: जी,
0: वो सबको मिले।
1: तो आपने बात की फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की, यानी बुनियादी ढांचे की, तो बुनियादी ढांचे से क्या तात्पर्य है आपका?
0: जी, जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारे स्कूल परिसर या फिर कॉलेजों के परिसर में कई बार क्या होता है, महिलाओं के लिए अलग से शौचालय नहीं होते हैं, ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से उनका जो ड्रॉप आउट रेट्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ पाया गया है,
1: महिलाओं का या बच्चियों का भी कह सकते हैं,
0: बच्चियों
1: जी,
0: का
1: जी,
0: लड़कियों का
1: हाँ।
0: और इसके अलावा अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं सुरक्षित छात्रावास, हॉस्टल फैसिलिटीज जिसको हम देखते हैं, कई बार ऐसी लड़कियां जो सामाजिक रूप से वंचित वर्गों से आती हैं
1: जी,
0: उनके लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि वो अपने घर के आसपास इसको पढ़ें या फिर अपने घर में या स्कूल्स में, अच्छे स्कूल्स में जा सकें।
1: आवास की सुविधाएं नहीं होती,
0: आवास की सुविधाएं जो है वो नहीं होती हैं। तो इसी तरह से

0: राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उन्होंने छात्रावास की फैसिलिटीज को अवेलेबल कराया है,
1: यानी उन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि ये बच्चे जब पढ़ने आए तो उनके लिए आवासीय सुविधाएं भी उपलब्ध हो। आप ये कहना चाहती हैं?
0: जी। तो छात्रावास के अलावा अगर हम देखें तो स्वच्छता की सुविधाएं, जैसे कि बेसिक हाइजीन और सैनिटेशन की हम बात करते हैं, एक साफ सुथरा माहौल की हम बात करते हैं, तो उसका निर्माण सुनिश्चित किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम ये भी उठाया जा रहा है कि जैसे कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जिसको हम KGBVs भी कहते हैं, तो उसमें उन लड़कियों को स्कूली शिक्षा पूरी करने में सहायता दी जाती है जो कि सामाजिक व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आती हैं, ताकि वो 12वीं तक अपनी शिक्षा को पूरा कर सके और उनको वो सारी सुविधाएं मिल सके। और नीति में ये भी कहा गया है कि जितने भी हमारे KGBVs हैं उनको पूरे देश में विस्तारित किया जाएगा
1: जी।
0: और इसी के साथ साथ कुछ ऐसी छात्रवृत्तियां भी हैं जिसे में स्कॉलरशिप हो गई, सो दैट हर लड़की को, हर ट्रांसजेंडर जो हमारा बच्चा है, विद्यार्थी है, उसको समान रूप से शिक्षा दी जाए। छात्रवृत्ति के साथ साथ मुफ्त साइकिल, स्कूटी या फिर वित्तीय प्रोत्साहन भी देने का प्रावधान है
1: जी।
0: और इसके साथ साथ एक बहुत ही जरूरी चीज है जो कि भेदभाव रहित पाठ्यक्रम, ये एक ऐसी बातें जो है इसमें की गई है कि पाठ्य पुस्तक या फिर शिक्षा पद्धति उसमें सभी में जेंडर स्टीरियोटाइप्स और बायस को हटाना चाहिए। तो जो नीति है वो पाठ्य पुस्तक और शिक्षा पद्धतियों में भेदभाव रहित पाठ्यक्रम की बात करती है।
1: डॉक्टर श्वेता, हमने पाठ्यक्रम की बात तो सुनी, भेदभाव रहित पाठ्यक्रम ये क्या होता है, इसके बारे हम जरूर जानना चाहेंगे।
0: जी, ये बहुत ही जरूरी है, बहुत ही गहराई वाला प्रश्न है, क्योंकि देखा जाए तो पाठ्यक्रम हम सभी ने सुना है
1: जी,
0: लेकिन आज के जो हमारी स्थिति है, हम बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी की, जेंडर समानता की
1: जी।
0: और खाली जेंडर समानता ही नहीं, हम बात करते हैं सामाजिक व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आने वाले सभी उन लोगों की, जैसे कि हमारे ट्राइबल, जैसे कि हमारे SC/ST,
1: आदिवासी लोग,
0: जनजातीय लोग, है ना। तो इन सभी का जो है समान रूप से रिप्रेजेंटेशन हो, हमारी टेक्स्ट बुक में इनके जीवन को शामिल किया जा सके, इनकी जो स्थिति है उसको दर्शाया जा सके।
1: तो जो मुझे समझ में आया वो कुछ ऐसा है कि जेंडर इक्वेलिटी या जेंडर इश्यूज की जब हम बात करते हैं तो इसका सिर्फ स्त्री और पुरुष या बच्चे और बच्चियां नहीं होता है
0: जी,
1: इसका शायद ये है।
0: नहीं, मैं इसमें आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि जेंडर का असली मतलब क्या है, जो हम ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स जो हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे समाज में आपने देखा होगा हम स्त्री की बात करते हैं, पुरुष की बात करते हैं, बट अभी ये एक पहला कदम जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने लिया है वो ये है कि उन्होंने इस जेंडर आइडेंटिटी के कैटेगरी में ट्रांसजेंडर्स को भी रखा है
1: जी।
0: स्त्री और पुरुष ट्रांसजेंडर्स भी उनके साथ साथ समाज का हिस्सा बन सके
1: जी।
0: जिस तरह से पहले हमारे पाठ्यक्रम में या फिर हमारे सामाजिक ढांचे में स्त्री का काम अलग होता था, पुरुषों का काम अलग होता था, और किताबों में या पाठ्यक्रम में उनको उसी तरह से दर्शाया जाता था, तो इस बार जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उन स्टीरियोटाइप्स को, उन बायसेस को तोड़ने की कोशिश करती है।
1: हाँ, कुछ उदाहरण जैसे कि समाज में मिलते हैं कि जैसे अगर लड़का है तो क्योंकि वो शारीरिक श्रम अधिक कर रहा है तो ये माना जाता था कि लड़की का काम है नहीं ज्यादा, तो उसको आहार की जो सुविधा है ज्यादा मिले, इसको कम मिले, इस तरह की बातें होती थी पहले।
0: तो एक स्कूली जो उदाहरण है वो मैं आपको देना चाहूंगी, आपने ज्यादातर देखा होगा कि जो लड़कियां हैं उनको रंगोली बनाने के लिए बहुत बार प्रोत्साहित किया जाता है या फिर वो उसी में भागीदारी उनकी होती है, लेकिन लड़कों की भागीदारी देखी जाए तो कोई भी भारी सामान या भारी वस्तु उठानी होती है तो ज्यादातर जो शिक्षक होते हैं वो लड़कों को ही उस चीज में बुलाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जितने भी हमारे स्टीरियोटाइप्स हैं, ये तो सिर्फ एक उदाहरण जो मैंने आपको दिया है, बट इसके अलावा बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहां पर आपको लड़कों और लड़कियों में एक भेदभाव नजर आता है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा नीति जो है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, अपने पाठ्यक्रम के द्वारा, अपनी पाठ्य पुस्तकों के द्वारा इन स्टीरियोटाइप्स को हटाकर समानता की भावना को विकसित करने की दिशा देती है।
1: ये आपने बड़ी उपयोगी बात बताई और इसके द्वारा मुझे लगता है हमारे श्रोता भी बहुत लाभान्वित होंगे
0: जी।
1: तो अब आते हैं NCERT पर। हम ये विशेष रूप से जानना चाहेंगे कि NCERT के जेंडर विभाग का, जिस विभाग से आप हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और ये विद्यालयी शिक्षा को और अधिक समावेशी बनाने में किस प्रकार से योगदान दे रहा है आपका विभाग?
0: जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ जेंडर स्टडीज, जेंडर अध्ययन विभाग जो है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसका जो नाम था वो था विमेन स्टडीज, डिपार्टमेंट ऑफ विमेन स्टडीज
1: जी,
0: बट क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट के बाद इसका नाम जो है डिपार्टमेंट ऑफ जेंडर स्टडीज रखा गया
1: जी।
0: इसके पीछे ये कारण रहा कि विमेन स्टडीज जो है उनको हम खाली विमेन तक सीमित ना रखें
1: जी।
0: जो जेंडर का अर्थ था वो सिर्फ विमेन तक सीमित रहता था, महिलाओं तक सीमित था, लेकिन उसके बाद इसमें हम ये नहीं कहते हैं कि सिर्फ लड़कियों को हमें आगे बढ़ाना,
1: जबकि जेंडर से अर्थ आपका दोनों का होता है।
0: जेंडर से अर्थ, बिल्कुल सही कहा आपने, जेंडर से अर्थ हमारा सभी, जो हमारी लड़कियां हैं, जो हमारे लड़के हैं और हमारे ट्रांसजेंडर्स हैं, उन सभी को समान रूप से आगे बढ़ाना
1: जी।
0: किसी के साथ भी भेदभाव ना हो और सभी को समानता से आगे बढ़ाया जा सके। तो इसके लिए हमारा जो जेंडर अध्ययन विभाग है वो स्कूली शिक्षा में जेंडर इक्वालिटी, जेंडर समानता और संवेदनशीलता लाने के लिए एक समर्पित विभाग है। और पहले इसे, जैसे मैंने आपको बताया था, एक महिला अध्ययन विभाग कहा जाता था, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत इसके दायरे को और बढ़ाया गया है। इसमें बालिकाओं के साथ साथ ट्रांसजेंडर छात्रों और जितने भी हमारे जो सामाजिक व आर्थिक रूप से कमजोर समूह है उनको भी शामिल किया गया है।
1: तो इसमें आप लोग क्या क्या करते हैं, आप लोगों की गतिविधियां क्या हैं?
0: जी, सबसे पहला हमारा है कि हम नीतिगत क्रियान्वयन की हम बात करते हैं, कि जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उसके तहत नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसमें कि दो हमारे फ्रेमवर्क्स हैं, पहला है फाउंडेशनल स्टेज के लिए और दूसरा है स्कूल एजुकेशन के लिए। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा है उसमें जेंडर समानता के जो लक्ष्य हैं उनको जमीनी स्तर पर लागू करना
1: जी।
0: ये सबसे पहला हमारा जो मुख्य भूमिका है वो ये है। दूसरा है जितनी भी रूढ़िवादिता है उनका हम जो है उन्मूलन कर सके।
1: रूढ़िवादिता जैसे कुछ उदाहरण आप देना चाहेंगे?
0: जी हाँ, जैसे कि मैंने अभी आपसे बात की थी, हमारे समाज में बहुत सारे इस तरह के जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं जो कि महिलाओं और पुरुषों को अलग तरह से देखते हैं, महिलाओं का रोल अलग दिखाते हैं और पुरुषों का रोल अलग दिखाते हैं
1: जी।
0: तो उसी तरह की जो रूढ़िवादिताएं हैं उनको स्कूली शिक्षा के माहौल में, पाठ्यक्रम में तथा जो शिक्षण पद्धति है उनमें इन तरह की जो भेदभाव है उसको पूरी तरह से समाप्त करना
1: जी।
0: उसके अलावा जो हमारा हमारा जो विभाग है वो ये भी काम करता है कि जो समाज के सबसे पिछड़े ग्रामीण इलाकों से आने वाले या आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की लड़कियां या जो ट्रांसजेंडर बच्चे हैं उनकी शिक्षा के अधिकारों की हम बात करते हैं।
1: तो ये जानकारी आपने बड़े विस्तार से हमें दी, अब हम ये जानना चाहते हैं ये कार्य आप किस प्रकार से करते हैं?
0: जी, ये जानना बहुत जरूरी है कि हम किस तरह के काम करते हैं जिससे कि हम अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकें। सबसे पहला जो है हमारा पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक, उनका विश्लेषण करते हैं कि किस तरह से जो है सभी नई या पुरानी किताबें उनकी समीक्षा हम करते हैं ताकि उनमें से किसी भी प्रकार की जेंडर स्टीरियोटाइप्स या जेंडर बायसेस को या फिर भेदभाव को हटाया जा सके और एक सकारात्मक प्रतिनिधित्व को हम उसमें शामिल कर सकें, जैसे कि किताबों के चित्र हो या फिर कहानियां हो जिसमें महिलाएं व ट्रांसजेंडर जो हैं हमारे उनको वैज्ञानिकों के रूप में, नेताओं के रूप में, खिलाड़ियों के रूप में और विभिन्न पेशेवर भूमिकाओं में दिखाना सुनिश्चित हो सके।
1: हाँ, पायलट्स के रूप में इत्यादि,
0: हाँ,
1: जी,
0: जी
1: जी।
0: तो आज हमारे श्रोता भी जानते होंगे इस चीज को, जिस तरह से चंद्रयान में हमारी बहुत सारी जो महिला वैज्ञानिक हैं उन्होंने इस चीज में लीड ली,
1: उनकी प्रतिभागिता बहुत बड़ी रही,
0: बहुत ज्यादा
1: सारे राष्ट्र में इसकी चर्चा है जी।
0: तो उन्होंने इस चीज को आगे बढ़ाया और पूरे राष्ट्र में महिलाओं की एक अलग भूमिका को,
1: एक अलग छवि बनी,
0: अलग छवि जो है उनकी बनी। तो इसी तरह से एक जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज की भी हम बात करते हैं, जिसको कि भाषा के रूप में, अगर हम शिक्षण सामग्री में जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज की बात करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल चेयरमैन एक ऐसा शब्द है जहां पर एक ऐसी इमेज बनती है कि एक चेयरमैन एक पुरुष है,
1: हाँ, ऐसा लगता है कि वो एक पुरुष है,
0: एक पुरुष है। तो उसकी बजाय हम बात कर सकते हैं चेयरपर्सन,
1: चेयरपर्सन
0: विच इज अ न्यूट्रल वर्ड। तो उसके लिए हम इस तरह की और भी बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जिनको हम जेंडर न्यूट्रल उसमें देखते हैं।
1: ऐसे और कौन कौन से शब्द हो सकते हैं हम जानना चाहेंगे, ये बड़ा दिलचस्प हो रहा है।
0: जी, बहुत जरूरी है ये देखना, जैसे कि फॉर एग्जांपल पुलिसमैन या पोस्टमैन, ज्यादातर हमने अपनी डेली लाइफ में अपने जो रोज की जिंदगी में इसी तरह के शब्द सुने हैं। तो पुलिसमैन की जगह पुलिस पर्सन हो सकता है, ऐसे ही पोस्टमैन की जगह पोस्ट पर्सन भी हो सकता है
1: बिल्कुल हो सकता है जी।
0: तो अब जैसे कि एक्टर है, एक्टर वर्ड अपने आप में न्यूट्रल वर्ड है,
1: न्यूट्रल वर्ड,
0: बट एक्ट्रेस जो है दैट शोज दैट इट्स अ फीमेल। तो इसी तरह से पुरुषों के लिए एक अलग शब्द भी होता है या फिर महिलाओं के लिए एक अलग शब्द भी हो सकता है, लेकिन ये ऐसे शब्द हैं जो कि सिर्फ पुरुष को दिखाया जाता है इन शब्दों में।
1: तो अब हम आते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न में, और आपसे हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर श्वेता कि शिक्षकों, अभिभावकों और विद्यार्थियों के लिए ऐसी कौन सी व्यवहारिक सलाह आप देना चाहते हैं या प्रैक्टिकल एडवाइस आप कौन सी देना चाहते हैं जिससे विद्यालय और घर दोनों स्थानों पर जेंडर संवेदनशील वातावरण बनाया जा सके।
0: जी ये भी मैं कहना चाहूंगी कि हम सारा जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ एक शिक्षक को ना देते हुए इसमें कहीं ना कहीं हमारे जो अभिभावक हैं और हमारे छात्र जो हैं खुद, वो तीनों ही चीजें मिलकर जो है प्रयास करने चाहिए, जिसमें कि हमारे शिक्षक, अभिभावक और छात्र, इसके लिए हमें पुरानी जो रूढ़िवादी सोच है उसको छोड़कर आपसी सम्मान की संस्कृति को सबसे पहले अपनाना होगा। तो उनके लिए कुछ व्यवहारिक और सुझाव जो है वो मैं देना चाहूंगी
1: जी।
0: इसके भीतर सबसे पहले अगर हमने देखा होगा कि हमारी जो क्लासरूम की सेटिंग्स हैं, जो हमारा बैठने का जो व्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं लड़के और लड़कियों को अलग बिठाया जाता है। आज भी जब हम कहीं दूर दराज इलाकों में जाते हैं तो लड़के और लड़कियों को अलग बिठाया जाता है, जबकि इस चीज को तोड़ते हुए हमें कक्षा में लड़कों और लड़कियों को एक साथ बिठाना चाहिए
1: जी।
0: और एक मिश्रित रूप में, ताकि वो एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ सके और टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में एक साथ भाग ले सके
1: और दोनों के बीच में एक समानता का भाव हो कि हम एक साथ बैठ सकते हैं
0: जी
1: जी।
0: और इसी तरह जैसे हमने अभी बहुत सारे उदाहरण की बात की थी, तो जो हमारा कामों का बंटवारा है, जिस तरह के काम हम रूढ़िवादी तरीके से बंटवारा करते हैं, ऐसा ना करें कि भारी सामान उठाने के लिए या फिर खेल के लिए हम लड़कों को प्रोत्साहन करें
1: और खाना बनाने के लिए
0: लड़कियों को करें या सजावट का काम करने के लिए हम लड़कियों को आगे बढ़वाएं। तो सभी जिम्मेदारियों को बारी बारी से बदला जाए
1: जी।
0: और इसके अलावा जो हमारी जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज है उसको हम बहुत ज्यादा प्रमोट करें
1: जी।
0: और उन सभी को प्रोत्साहित करें कि लड़के या लड़कियों जो है उनको हम एक न्यूट्रल शब्द का इस्तेमाल कर सकें, जैसे कि जेंडर न्यूट्रल भाषा
1: यानी कि जो तटस्थ भाषा है।
0: जी हाँ। तो कहने का मतलब ये है कि ज्यादातर कई बार हमने जो अपने कक्षा में देखा है, कुछ शिक्षक ऐसे जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर वो कहते हैं बच्चों या बच्चे, तो कहीं ना कहीं इस तरह से ये प्रोजेक्ट होता है कि लड़कियों को उस चीज में शामिल नहीं किया गया है। तो इसके बजाय हम कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि विद्यार्थी या क्लास या फिर आप सभी लोग, इस तरह के सामूहिक शब्दों का प्रयोग करें, ना कि सिर्फ लड़के या लड़कियां।
1: हाँ, क्योंकि यदि बच्चों कहा जाए तो लगता है कि लड़कों को बोला जा रहा है।
0: जी हाँ, तो इसी तरह से हम विद्यार्थियों कह सकते हैं।
1: हाँ, विद्यार्थियों कह सकते हैं,
0: न्यूट्रल शब्द भी।
1: शिक्षार्थियों भी कह सकते हैं।
0: जी। कई बार क्या होता है, ऐसे अनकॉन्शियस बायस होते हैं जिसको भी अनजाने में हम अपने बिहेवियर में ले आते हैं
1: जी।
0: तो ऐसा करने से हमें बचना चाहिए। जहां लड़कियों की तारीफ सिर्फ शांत और साफ सुथरी होने के लिए करी जाती है, वहीं पर लड़कों की तारीफ बहादुर और बुद्धिमान होने के लिए की जाती है
1: जी।
0: तो बुद्धिमता और मेहनत की तारीफ बिना जेंडर देखे की जानी चाहिए
1: जी।
0: और इसी के अलावा सकारात्मक जो भी रोल मॉडल्स हैं हमारे, उनके उदाहरण हमें देने चाहिए, जैसे कि महिला वैज्ञानिक या फिर पुरुष नर्स। कई बार आपने देखा होगा कि नर्स का जो जैसे ही हम सुनते हैं इस प्रोफेशन के बारे में, हाँ, वो जो छवि है उसमें हम सिर्फ महिलाओं को देखते हैं, या एयर होस्टेस की जो छवि है उसमें भी हम सिर्फ महिलाओं को देखते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्हीं स्टीरियोटाइप्स को हम जो है चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है।
1: हाँ, एयर होस्ट शब्द बहुत कम सुनाई पड़ता है
0: जी। एयर होस्ट आपको नहीं सुनाई देता। उसके अलावा एक दूसरा शब्द होता है स्टीवर्ड, शायद मुझे नहीं पता कि वो ठीक है,
1: दोनों यूज होते हैं।
0: हाँ, तो हम उसकी जगह एक ऐसे रोल मॉडल्स को, सकारात्मक जो उदाहरण दे सकें लड़कियों को, महिलाओं को, उस तरह के उदाहरण को हमें शामिल करना चाहिए, ताकि हमारे सभी बच्चे हर क्षेत्र में अपने उस अस्तित्व को स्वीकार कर सके
1: जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अंतिम प्रश्न आपसे मैं पूछना चाहूंगा, वो ये है कि यदि कोई शिक्षक या विद्यालय जेंडर संवेदनशील शिक्षण सामग्री या प्रशिक्षण या मार्गदर्शन आपके विभाग से प्राप्त करना चाहे, तो आप उन्हें किस प्रकार से सहायता प्रदान करेंगे?
0: जी, तो NCERT के बहुत सारे डिजिटल पोर्टल्स हैं, जिसमें कि प्रकाशन और समर्पित विभागों के माध्यम से भी इसे पूरी तरह से मुफ्त व ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं हमारे श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि सबसे पहला आपने अगर सुना होगा तो दीक्षा पोर्टल भी है और उसका एक मोबाइल ऐप भी है, वो

0: आप एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। दूसरा हमारा ई पाठशाला पोर्टल है, उस पर भी जितनी भी हमारी वेबसाइट्स हैं सभी तरह की जो सामग्री है उसको आप जाकर देख सकते हैं। तीसरा हमारा जो जेंडर अध्ययन विभाग, उसकी वेबसाइट पर भी हर तरह की जो सामग्री है और हर तरह की जो हमारी मॉड्यूल्स हैं उनको आप प्राप्त कर सकते हैं
1: जी।
0: इसके अलावा जो है हमारा एनसीईआरटी का एक पब्लिकेशन डिवीजन जहां पर किताबों की बिक्री भी होती है, तो यहां पर भी आप पोर्टल पे जाके ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं जो सीधे आपके स्कूल या घर पर डिलीवर हो जाएगी
1: जी।
0: मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगी अजीत जी, एक बहुत जरूरी जो कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने लिया वो ये कि लड़कियों और ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए समान गुणवत्ता वाली शिक्षा, इसको प्रदान करने के लिए एक विशेष कोष बनाया गया है जिसको हम जेंडर इंक्लूजन फंड भी बोलते हैं। इस नीति में विशेष रूप से लड़कियों और ट्रांसजेंडर छात्रों को शामिल करने का प्रावधान है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर श्वेता जी।
0: धन्यवाद अजीत जी।
1: हमें आशा है कि हमारे सभी श्रोताओं को आज की बातचीत से, हमारी चर्चा से सच में बहुत लाभ प्राप्त हुआ होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। तो श्रोताओं, हमारी आशा है कि आज की बातचीत आपके लिए बहुत ज्यादा लाभप्रद रही, और यदि आपको अच्छी लगी तो जरूर अपनी प्रतिक्रिया हमें लिख भेजिए। एक बार फिर से आप सबको हमारा नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम श्रोता संवाद। हमें आज के कार्यक्रमों के लिए आपसे प्रतिक्रिया की आशा रहेगी। हमारा टोल फ्री नंबर है 8800-440-5559, और साथ ही साथ हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी आप हमें संदेश भेज सकते हैं। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी उमंग। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का 107.1 मेगाहर्ट्ज पर एफएम रेनबो, और ठीक 1:05 के बीच आप सुन सकेंगे छत्रपति संभाजी नगर से दोपहर के समाचार।

आप सुन रहे हैं 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी मुंबई केंद्र से एफएम रेनबो चैनल। अब हमें न्यूज ऑन एआईआर ऐप और 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी सुन रहे हैं। मैं हूं वैशाली और आप सभी के लिए ले आई हूं हिट एंड हॉट। और इस समय का आप सभी को इंतजार रहता है, रोजाना हम आपकी फरमाइशें प्ले करते हैं हिट एंड हॉट में। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारी आंखें इस खूबसूरत दुनिया को देखने का जरिया है, लेकिन जरा सोचिए उनकी जिंदगी कैसी होती होगी जो सिर्फ अंधेरे को देख पाते हैं। हमारे देश में लाखों लोग कॉर्नियल ब्लाइंडनेस के कारण देख नहीं सकते। सबसे अच्छी बात यह है कि इस अंधेरे को दूर किया जा सकता है सिर्फ आपके और हमारे एक छोटे से फैसले से, और वो फैसला है नेत्रदान का। उम्र, आपका जेंडर या खून का ग्रुप कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, आप नेत्रदान कर सकते हैं। यहां तक कि जिन्हें चश्मा लगा है, मोतीबिंदु का ऑपरेशन हुआ है या शुगर बीपी है, वो भी नेत्रदान कर सकते हैं। इसके लिए मृत शरीर को कहीं ले जाने की जरूरत नहीं होती। डॉक्टरों की टीम घर पर आकर सम्मान पूर्वक ये प्रक्रिया पूरी कर लेती है। बस आपको ये करना है कि आपको आई डोनेशन के लिए अपने आप को रजिस्टर करना है, अपने परिवार वालों को भी रजिस्टर करना है। और दोस्तों, आज मैं आपकी फरमाइशें लेने से पहले ये बात क्यों कर रही हूँ नेत्रदान की, इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। आज जो है ये जो सप्ताह जो है, या मैं कहूँ अगर आपसे कि राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जा रहा है जो 25 अगस्त से शुरू हो चुका है और 8 सितंबर तक

मनाया जा रहा है और इस दौरान नेत्रदान के महत्व के बारे में बातें करना मेरा आपसे, आप सभी का, अपने दोस्तों से, परिवार से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सभी जानते हैं आँखों से क्या कुछ नहीं हो सकता। और जिसकी आँखें अच्छी नहीं है, ठीक नहीं है, देख नहीं सकती, उसके नैनों का क्या कसूर है ना।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का 107.1 FM रेनबो। आप सभी का दिल से धन्यवाद कि आपने मैसेजेस किए हैं, कॉल्स कर रहे हैं। पर जैसे कि आप समझ रहे होंगे कि आज व्यस्तता कुछ ज़्यादा रही और कई सारे आप सभी के लिए कमर्शियल्स और बाकी प्रायोजित कार्यक्रम और साथ ही साथ प्रोमोज रहे, तो इसलिए आप सभी के कॉल्स लेना और मैसेजेस देखना थोड़ा मुश्किल हो गया था और कुछ तकनीकी काम भी चल रहा था, तो उसके कारण जो है कुछ चीजें बंद रखनी पड़ी कुछ समय के लिए। तो धन्यवाद समझने के लिए। और आप सभी के मैसेजेस मुझे मिले हैं, पंकज मोहर जी का मुझे अभी कॉल आया और भी कॉल्स आ रहे हैं, मैं बहुत जल्द लूंगी। इब्राहिम जो है इन्होंने भी हमें कॉल किया। मैं संजय दर्शन जी का मैसेज देख रही हूं और वजह मैंने बता दी। बहुत सारी दोस्तों तकनीक

की चीजें होती हैं जिस वजह से हम कभी कभी आपके कॉल्स नहीं ले पाते या मैसेजेस नहीं पढ़ पाते। और मैं देख रही हूँ और आपने लिखा है मेरी जिंदगी में आए हो, ये आपको अरमान फिल्म का गाना सुनना है जो मैं बिल्कुल प्ले करूंगी आपके लिए। साथ ही साथ हमें मोहम्मद फरमान, इनका मैसेज आया है, वो सुन रहे हैं हमें उत्तर प्रदेश ग्राम दुल्हापुर जिला मुरादाबाद से। उनके साथ है मोहम्मद सलमान, इरफान, इसरार और नरगिस खातून। शुभलक्ष्मी मस्तकर जी हमें सुन रही है, धन्यवाद। अंधेरी ईस्ट से डॉक्टर मंजू हमें सुन रही है, बनी हुई है, धन्यवाद आपका। और भूषण खेरा जी हमारे साथ बने हुए हैं फाजिल का पंजाब से, और साथ ही इनका पूरा परिवार भी सुन रहा है हमें, धन्यवाद। अशोक पाटिल जी वर्ली कोड़ीवाड़ा से बने हुए हैं, आपका दिल से धन्यवाद। और आगे मैं देख रही हूँ कि बाबा दादर से हमारे साथ बने हुए हैं राकेश माथुर जी, हमें पुणे से सुन रहे हैं और इन्होंने भी एक फरमाइश भेजी है, तो मैं सबसे पहले संजय दर्शन जी की फरमाइश प्ले करने वाली हूँ और उसके बाद जो है राकेश माथुर जी की फरमाइश मैं प्ले करूँगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गाना अभी मैं निकाल ही रही हूँ आप सभी के लिए, क्योंकि कुछ दोस्तों तकनीकी चीज़ें होती हैं जिस वजह जैसे हम थोड़े से व्यस्त हो जाते हैं, तो बस ये गाना प्ले करने की कोशिश हो रही है। बाकी आप सभी बिल्कुल बने रहें, सुनते रहें, 107.1 FM रेनबो पर हैं आप और हिट एंड हॉट चल रहा है।

आप सुन रहे हैं 107.1 मेगाहर्ट्ज पर FM रेनबो, हिट एंड हॉट चल रहा है। और मुझे मैसेजेस आए हैं जिनके मेहर अरोड़ा और उनके परिवार की तरफ से पद्मपुर श्री गंगानगर राजस्थान से। और साथ ही साथ अभी मेरी बात हुई जगन्नाथ केदारे इनसे, इन्होंने हमें खंडाला ब्लाइंड होम से कॉल किया और उन्होंने कहा कि हम सभी जो है रेनबो को सुनते हैं, हम नियमित श्रोता है और सच में बहुत ही पसंद करते हैं शो को। और इन्होंने कहा क्योंकि ये भी ब्लाइंड हैं तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा लगा कि आपने जो है थोड़ा हम पे भी नजर डाली, तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके इतने प्यारे शब्द आपने हम पर लुटाए, FM रेनबो पर लुटाए। लेकिन सच कहती हूँ, आप में से जो हर एक हमारे श्रोता हैं हमारे लिए बहुत ज्यादा कीमती है, उतने ही कीमती जैसे कि हमारी अपनी आंखें होती है, उतने ही कीमती आप सभी हमारे लिए है। क्योंकि अगर आप ना हो तो हम ये किसके लिए कर रहे हैं, तो आप हैं और आप सुनते हैं, इसलिए हम बहुत ज़्यादा गर्मजोशी और उत्साह से आप सभी के लिए यहाँ पर प्रोग्राम्स कर पाते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्होंने जो है करीब आए इस गाने की रिक्वेस्ट की है, तो मैं दो गाने प्ले करने वाली हूँ, कई सदियों से और करीब आ, और ये फरमाइश किए हुए गाने हैं जैसे मैंने आप सभी को पहले ही बताया था। और साथ ही साथ यहाँ पर हमें संदीप कुमार जी का मैसेज आया है जालंधर से, ये है, मैं वही देखने की कोशिश कर रही हूँ ये कहाँ से कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। इनका नाम है संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल साहनी, पिंगावाला चौक गोराया जालंधर से इन्होंने हमें मैसेज किया है। बस मैं सोच में पड़ गई हूँ, आ गले लग जाए, यानी शायद रफ़ी साहब वाला ही ये फरमाइश कर रहे होंगे अप्रैल फूल फिल्म का। और मुझे यहाँ मैसेज आया है प्रकाश शिंदे जी का भी, ये कहते हैं, लिखते हैं बहुत सारी बातें, धन्यवाद आपका। कुछ तकनीकी कारणों से फोन कॉल और मैसेज मैं नहीं देख पाई। अब यहां पर प्रकाश शिंदे जी लिखते हैं, रिमझिम गिरती बारिश की बूंदे साज नया बजाती हैं, मिट्टी की सौंधी खुशबू में प्रकृति का गीत सुनाती हैं, हर कतरा जब छूता है जमी को एक साज सा बजता है, ऐसा लगता है जैसे आसमां से कोई खूबसूरत राग सजता है, सुबह सवेरे शाखों पर पंछी जब चहचहाते हैं, बिन शब्दों के भी वो दिल को कितना सुकून दे जाते हैं, कुदरत का ये मधुर तराना कानों में रस घोलता है, इंसान को तो बस खामोश है यहाँ हर परिंदा बोलता है, वाह क्या बात है। और लिखते हैं, प्रकृति हर समय हमें अच्छे संगीत सुनाती है, वाह क्या बात है। और इन्होंने ये भी लिखा है कि आने वाले 8 सितंबर को सुरीली आवाज की मलिका वर्सटाइल गायिका आशा ताई का जन्मदिन है जी, उनकी जयंती है, और आशा ताई को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। पहले ही से ये अपनी जो है भावनाएं यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं और गानों की फरमाइश इन्होंने भेजी है, तो मैं बिल्कुल प्ले करने वाली हूँ आपके लिए सैलाब फिल्म का गाना, क्योंकि बहुत ही सुंदर है ये मुझको ये जिंदगी। तो ये गाने प्ले होंगे, सबसे पहले हम प्ले करेंगे ये तीन गाने जो मैंने आपको बताए। बने रहे, सुनते रहे 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का 107.1 FM रेनबो और आप हमें 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर FM पर और न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर और साथ ही साथ 1044 किलोहर्ट्ज़ के मीडियम वेव डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर भी सुन रहे हैं। और आप सभी का दिल से धन्यवाद कि आप बने हुए हैं, आपने कॉल्स किए हैं, मैसेजेस किए हैं, इतने प्यार के लिए वाकई हमारा दिल कृतज्ञ है। तो बात अब आगे करूं तो मेरी अयाज चौधरी जी से बात हुई थी और इन्होंने कहा कि सच में एक बात कहूं कि जब आपने ब्लाइंडनेस की बात की, ये सारी बातें की, आपको मेरी बात तो पता ही है क्योंकि अयाज चौधरी भी नेत्रहीन है। और उन्होंने कहा और ऐसा नहीं था कि वो जन्म से ब्लाइंड है, उनके साथ एक हादसा हुआ जिसके वजह से उनकी आंखों की रोशनी चली गई। और उन्होंने ये भी कहा हमसे कि देखिए कि मेरी माँ ने कहा डॉक्टर से कि कुछ भी करके भले ही एक आंख ही सही, मेरे बेटे को आप कोई आंख लगा दीजिए। तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, बिल्कुल हो सकता, ये नामुमकिन है क्योंकि उनके नर्व्स डैमेज थे। तो ये वाकई दुख की बात है दोस्तों, लेकिन हम जो है नेत्रदान के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि देखिए लाखों लोग जो है कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से सफर कर रहे हैं और इस वजह से नेत्रदान करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ये हमारा फर्ज है। राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जा रहा है दोस्तों, 8 सितंबर तक चलेगा ये, 25 अगस्त को शुरू हुआ था और इसलिए हम आज नेत्रदान की बातें, हमने कुछ बातें की, कुछ और बातें हम करेंगे। तो दोस्तों बात ऐसी है कि तत्काल कदम ये उठाया जा सकता है अगर आपके परिवार के सदस्य जिनकी मृत्यु हो गई हो अगर वो रजिस्टर्ड है आई बैंक के साथ, तो बात ऐसी है कि बस आपको जो है तुरंत नज़दीकी आई बैंक को सूचित करना चाहिए तब तक जब तक मृतक की आंखें बंद कर दे और पंखा बंद कर दे, यानी हाँ एक बार जो है किसी का देहांत हो जाए तो उनकी आंखें बंद कर दीजिए, पंखा बंद कर दीजिए और सिर के नीचे एक तकिया रख दे ताकि आंखों में नमी बनी रहे। ये कीजिएगा आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए कि जब तक कोई आई बैंक से डॉक्टर्स आके कलेक्ट ना कर सके। और ये तभी मुमकिन है अगर संकल्प लिया हो उस इंसान ने जिसकी देहांत हुई है कि वो अपने आंखों का दान करेंगे। तो साथियों बहुत आसान सी चीज़ें हैं, अगर हम ये करें तो किसी को एक नई जिंदगी मिल सकती है और हम खुद जो है अपने आंखों के जरिए और जी सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं और कुछ बातें आपसे साझा करेंगे। बहरहाल अब देखिए मुझे मैसेज आया था फिरोजी गनपुरिया, इनका भी और इनका गाना भी मैं प्ले करने वाली हूँ। दत्ता केदार जी पंढरपुर से हमें लिख भेजते हैं और ये आँखें है ना है आईना, ये सुनना चाहते हैं पर ये जो गाना है अभी अवेलेबल नहीं है। और बाकी मैं आगे देख रही हूँ हमारे जो श्रोता है उनके मैसेजेस है और मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि फिरोज जी ने ये भी लिखा था कि उनको बहुत ही अच्छा लगा, प्राउड फील हुआ कि मैंने आज सरस्वती देवी की कहानी बताई। तो कहते हैं क्योंकि वो खुद पारसी है कि पूरी पारसी कम्युनिटी बहुत प्राउड महसूस करती है सरस्वती देवी जी पर। और अब यहाँ पर पंकज मोहर जी के मैसेजेस भी कई सारे रहे और इन्होंने ये लिखा है कि हिंदी सिनेमा में संगीत का योगदान बहुत अनमोल है, संगीत सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है, दिल खुश हो जाता है। और बाकी और तमाम चीजें लिखते हैं जो शोज हुए उनके बारे में, धन्यवाद आपका। और यहां पर और किसकी बातें बाकी मैं वही देख रही हूं, तो बस अब गाने प्ले करना ही बाकी है। तो सबसे पहले आप सभी को सुनवाने वाली हूं मैं फिरोज जी की फरमाइश चुरा लिया है तुमने, फिर जो है आ गले लग जा, ये भी एक फरमाइश थी मैं पहले अनाउंस कर चुकी हूं, वो गाना प्ले होगा। और फिर जो है मुझको ये जिंदगी लगती है हंसी और तुम क्या मिले जाने जा, ये चार गाने प्ले होंगे। आप सुनते रहें, बने रहें 107.1 FM रेनबो पर, म्यूजिकली योर्स।

0: आप सुन रहे हैं हिट एंड हॉट 107.1 एफएम रेनबो पर। आप में से बहुत सारे श्रोताओं के मैसेजेस पढ़ने का और देखने का समय नहीं मिल पाया है, तो आप सभी से मैं इतना ही कहूंगी कि बस यूं ही बने रहें, और आप सभी का बहुत ही दिल से धन्यवाद मैं देना चाहती हूं। हमें मैसेज आए हैं अजय साखरे जी का इंदौर से, उनको प्लेलिस्ट बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर मैं देख रही हूँ आर्यन राज, रोहित राज, पीयूष राज मुजफ्फरपुर बिहार से हमें सुन रहे हैं, मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा हमें सुन रहे हैं, और ये आगे गुरमीत सिंह और मीता सिंह जी हमें सुन रहे हैं नई दिल्ली से, धन्यवाद आपका। अनिल कांबड़े जी हिंगोली से सुन रहे हैं, बने हुए हैं। आकांक्षा मनोज सिन्हा भी अहमदाबाद से बनी हुई है। हितेंद्र दास असम से सुन रहे हैं। हरजिंदर छिंदा जसवीर ये हमारे साथ बने हुए हैं गांव नथाना पंजाब से, धन्यवाद, और साथ में इनका परिवार भी जुड़ा हुआ है। मुकेश कश्यप जी जो हैं ये भी बने हुए हैं जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर से, ये हमारे साथ बने हुए हैं। और ज्योति घाटोल अकोला से हमें मैसेज करती हैं, और डे कैस्ट्रो जॉन के मैसेज मुझे आए हैं, धन्यवाद। जनकपुरी सहारनपुर से यशवंत आड़मुठे जी, जगदीश मठाड़ जी, और माफ़ कीजिएगा अगर नाम सही से नहीं लिया हो मैंने, और हमारे कई सारे श्रोता जैसे गोप परिवार, राजेंद्र परमार जी, काजल कक्कड़ जी, अभिजीत गवाणकर जी, ये सभी बने हुए हैं। अभी आप सुनेंगे ठीक 2 बजे दिल्ली से प्रसारित होने वाले मिड डे न्यूज़, और मैं आपसे मिलूंगी 15 तारीख को इसी समय 11 से 2 के बीच।
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Union Home Minister Amit Shah chairs 28th meeting of Western Zonal Council in Goa. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar holds bilateral meeting with Luxembourg Deputy Prime Minister Xavier Bettel, says in an era where whole world is worried about uncertainty, India and Luxembourg have a trusted relationship. Death toll in Delhi's building collapse rises to 7. MCD South Zone Deputy Commissioner, 4 engineers suspended. Enforcement Directorate conducts searches at 7 premises linked to TMC MP Nadeemul Haq's Urdu Daily over money laundering. IMD forecasts heavy rainfall over Bihar, Madhya Pradesh, Eastern Uttar Pradesh, Uttarakhand, West Bengal and parts of Northeast till tomorrow. And in tennis, defending champions Aryna Sabalenka and Carlos Alcaraz storm into quarterfinals of US Open. Union Home Minister Amit Shah is chairing the 28th meeting of the Western Zonal Council in Panaji today. The council comprises Goa, Gujarat and Maharashtra along with the Union Territories of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu. We have more from our correspondent.
2: Goa CM Pramod Sawant, Gujarat CM Bhupendra Patel and Maharashtra CM Devendra Fadnavis are among those participating in the meeting. Representatives from Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu are also taking part. Issues of common concern between the centre and the states are on the agenda, including matters requiring joint action. After the meeting, Home Minister Amit Shah is scheduled to attend the function for presentation of President's Police Colour to the Goa Police. Nikhil Upadhyay, Akashwani News, Panaji.
1: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said that in an era where the whole world is worried about uncertainty, India and Luxembourg have a trusted relationship. Dr. Jaishankar said this while meeting Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs and Foreign Trade of Luxembourg, Xavier Bettel, in New Delhi this afternoon. Dr. Jaishankar recalled his visit to Luxembourg in the beginning of this year. The External Affairs Minister said trade, investment, financial cooperation have been at the heart of the relationship.
3: It's a great pleasure to welcome you and your delegation to India. Your visit, along with, I believe, your Minister of Economy, reflects the growing, deepening partnership between us. Ours is a very trusted relationship. It is a relationship we've done a lot, where we have the confidence in being able to do even more.

0: Indices extended losses. During the afternoon session today, the Sensex declined 467 points to 76,049, while the Nifty fell 138 points to 23,760 when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Union Home Minister Amit Shah chairs 28th meeting of Western Zonal Council in Goa. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar holds bilateral meeting with Luxembourg Deputy Prime Minister Xavier Bettel, says in an era where whole world is worried about uncertainty, India and Luxembourg have a trusted relationship. Death toll in Delhi's building collapse rises to 7. MCD South Zone Deputy Commissioner for Engineers suspended. Enforcement Directorate conducts searches at 7 premises linked to TMC MP Nadimul Haq's Urdu Daily over money laundering. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह ने गोवा में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री जेवियर बेटल के साथ द्विपक्षीय बैठक की। कहा, जब पूरी दुनिया अनिश्चितता से चिंतित है, भारत और लग्जमबर्ग के बीच भरोसेमंद संबंध है। दिल्ली में सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 7 हुई। एमसीडी दक्षिण जोन के उपायुक्त और 4 इंजीनियर निलंबित। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस सांसद नदीमुल हक के उर्दू दैनिक से जुड़े 7 परिसरों में धन शोधन के आरोप में छापेमारी की। बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तक तेज बारिश का अनुमान। और टेनिस में आयना सबालिंका और कार्लोस अल्काराज अमरीकी ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में केंद्र और सदस्य राज्यों से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसमें समन्वय और संयुक्त कार्रवाई की आवश्यकता वाले मामलों पर विशेष बल दिया गया।
2: बैठक में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए। बैठक में केंद्र और राज्यों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह गोवा पुलिस को प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर यानी राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में शामिल होंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। वे वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे। वे 20,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित 326 किलोमीटर लंबे पश्चिमी माल गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंडों को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री वडोदरा और टांडा रोड के बीच एक नई रेल सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। इससे वडोदरा, छोटा उदयपुर और अलीराजपुर जिलों के लोगों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने युवाओं से मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ दृढ़ रुख अपनाने और नशा मुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया है। गुवाहाटी विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने युवा पीढ़ी से मादक पदार्थों के खिलाफ लड़ाई में प्रतिबद्ध रहने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति ने उपस्थित सभी लोगों को नशा मुक्त समाज के निर्माण की दिशा में काम करने की शपथ भी दिलाई। उपराष्ट्रपति ने तमिल साहित्य कृतियों का असमिया में अनुवाद करने की विश्वविद्यालय की पहल की प्रशंसा की। उन्होंने गुवाहाटी विश्वविद्यालय में 110 करोड़ रुपए की अवसंरचना विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा है कि ऐसे समय में जब पूरी दुनिया अनिश्चितता से चिंतित है, भारत और लग्जमबर्ग के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद संबंध है। डॉ. जयशंकर ने ये बात आज नई दिल्ली में लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री, विदेश मामलों तथा व्यापार मंत्री जेवियर बेटल से मुलाकात के दौरान कही। विदेश मंत्री ने मुक्त व्यापार समझौते को दिए गए मजबूत समर्थन के लिए लग्जमबर्ग का आभार व्यक्त किया।
3: Ours is a very trusted relationship.
4: हमारा रिश्ता बहुत भरोसेमंद है. ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें हमने बहुत कुछ किया है और हम आगे भी और अधिक करने का भरोसा करते हैं. खासकर आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती, विविधता लाने और भविष्य में मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी मिलने की संभावना के संदर्भ में.
3: Ratification likely in the coming future.
1: डॉक्टर जयशंकर ने इस साल की शुरुआत में अपनी लग्जमबर्ग यात्रा को याद किया. उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में दोनों पक्षों के नेताओं ने कई बार एक दूसरे से बातचीत की है. विदेश मंत्री ने कहा कि व्यापार, निवेश और वित्तीय सहयोग दोनों देशों के संबंधों का आधार रहे हैं. उन्होंने कहा कि दोनों देश अंतरिक्ष, डिजिटल और हरित प्रौद्योगिकियों में सहयोग की संभावनाओं को भी तराश रहे हैं. डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि कोविड महामारी के बाद भारत और लग्जमबर्ग के बीच स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग में वृद्धि हुई है. इस अवसर पर श्री बेटल ने कहा कि लग्जमबर्ग का भारत के साथ विश्वासपूर्ण और ईमानदार संबंध है. श्री बेटल 3 दिवसीय भारत यात्रा पर आज तड़के नई दिल्ली पहुंचे. ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं.
5: अपडेट रहे, आगे रहे. एक्सपर्ट @AIRNewsHindi और Instagram पर AIR News Alerts को फॉलो करें.
1: ये आकाशवाणी है. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में ढही इमारत स्थल का आज फिर दौरा किया और सुरक्षा उपायों तथा जारी बचाव अभियान की समीक्षा की. मुख्यमंत्री ने बताया कि मलबे का 80% हिस्सा दशकों पुराने बहुमंजिले भवन स्थल से हटा दिया गया है. हादसे में मरने वालों की संख्या 7 हो गई है और 3 की हालत गंभीर है. श्रीमती गुप्ता ने कहा कि भवन के मालिक की अनदेखी के कारण ये दुर्घटना हुई.
6: इस बिल्डिंग के मालिक पे कार्रवाई होगी और जो इसके आसपास की जितनी डेंजरस बिल्डिंग है उनको भी आइडेंटिफाइड करके ध्वस्त किया जाएगा. विशेष रूप से इस बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे वाली बिल्डिंग को भी हमने खाली करवा दिया है और तुरंत प्रभाव में उसे भी डेमोलिश किया जाएगा.
1: दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी आज दुर्घटना स्थल का दौरा किया. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीम अभियान में निरंतर काम कर रही है.
7: माननीय मुख्यमंत्री जी ने कमिश्नर साहब को और चीफ सेक्रेटरी साहब को आदेश दिया है, जितने अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेवारी थी चाहे वो किसी भी रैंक का हो उनको तुरंत सस्पेंड किया जाए, सख्ती से कार्रवाई की जाए. जो बच्चे हैं यहाँ से उनको अकोमोडेट किया गया अलग अलग जगह पर, और आगे के लिए भी जितनी पब्लिक यूटिलिटीज हैं उनको अपना स्ट्रक्चरल ऑडिट देना होगा ताकि ये मनमर्जी से बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ ना कर पाए.
1: इस बीच दक्षिण जोन के एमसीडी उपायुक्त राकेश कुमार, अधीक्षण अभियंता रणवीर सिंह, कार्यकारी अभियंता ललित कुमार, सहायक अभियंता सुनील चौहान और एक कनिष्ठ अभियंता को निलंबित कर दिया गया है. भवन मालिक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है. दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि दिल्ली में अवैध 5 मंजिला भवनों को तत्काल सील करने के निर्देश जारी किए गए हैं. राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिरीक्षक नरेंद्र सिंह बुंदेला ने बताया है कि मलबे की भारी मात्रा के कारण बचाव अभियान शाम तक जारी रहने की संभावना है. आकाशवाणी से विशेष बातचीत में श्री बुंदेला ने बताया कि एनडीआरएफ बचाव अभियान के लिए विशेष और आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल कर रहा है.
8: इसमें मतलब स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू के ऑपरेशंस में बेसिकली ब्रीचिंग सिस्टम, कटिंग सिस्टम यूज करते हैं, जो है इक्विपमेंट्स है सीमेंट और कंक्रीट काटने के लिए. लिफ्टिंग इक्विपमेंट होते हैं, इनको स्लैब्स को रिमूव करने के लिए इन्फ्लेटेबल बैग्स वगैरह भी है जो इस्तेमाल करते हैं. और शोरिंग सिस्टम है, ये हाइड्रोलिक शोरिंग है, वुडन शोरिंग है. ये डिपेंड करता है किस तरह का वहाँ पर स्ट्रक्चर है, क्या रिक्वायरमेंट है वो करती है. और डिटेक्शन सिस्टम, इसमें कैनाइन है या लाइट डिटेक्टर्स इक्विपमेंट वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं.
1: प्रवर्तन निदेशालय ने उर्दू दैनिक अखबार मशरिक और उसके निदेशक तथा तृणमूल कांग्रेस के सांसद नदीमुल हक से जुड़े एक मामले में कोलकाता, दिल्ली और रांची में 7 परिसरों में छापेमारी की है. जांच एजेंसी ने बताया कि ये मामला सांप्रदायिक वैमनस्य को कथित तौर पर बढ़ावा देने संबंधी सामग्री के प्रसार और प्रकाशन तथा अवैध लेन देन के आरोपों से जुड़ा है. राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा है कि स्वच्छ वायु एक मूलभूत आवश्यकता है. नई दिल्ली में आज स्वच्छ वायु दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में न्यायमूर्ति श्रीवास्तव ने कहा कि स्वच्छ वायु जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.
4: ये उन प्रयासों को पहचानने के लिए है जो पूरे देश में विभिन्न शहरों और वार्डों द्वारा ये सुनिश्चित करने के लिए किए गए हैं कि हवा की गुणवत्ता बनी रहे और प्रदूषक तत्व PM10 तथा PM2.5 का स्तर उन सीमाओं

0: नीचे लाया जाए जो नियामकों द्वारा तय की गई है। स्वच्छ हवा सिर्फ एक आकांक्षा नहीं है बल्कि ये एक व्यवहारिक लक्ष्य है जिसे समर्पित प्रयासों, उचित योजना और जमीनी स्तर पर प्रभावी काम के माध्यम से हासिल किया जा सका है।
1: केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत में चिकित्सा पर्यटन में आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने की बड़ी क्षमता है। नई दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा और कल्याण एक्सपो संजीवनी 2026 में श्री गोयल ने कहा कि भारत अपनी मजबूत चिकित्सा व्यवस्था के जरिए दुनिया की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा कर सकता है। उन्होंने कहा कि भारत को उच्च गुणवत्ता, पारदर्शिता और मरीजों की जरूरतों को प्राथमिकता देते हुए वैश्विक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए मानक स्थापित करने चाहिए। श्री गोयल ने बताया कि पिछले 7 वर्ष में 35 लाख अंतर्राष्ट्रीय मरीजों ने भारतीय स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। मौसम विभाग ने बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तक मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने बताया कि आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में कल तक गरज और बिजली चमकने की स्थिति बनी रहेगी। आज शाम दिल्ली के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय है। राज्य में अगले 4 दिन तक तेज बारिश का अलर्ट है। एक रिपोर्ट।
3: प्रदेश के ऊपरी हिस्से में बने 2 मॉनसून सिस्टम ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। मौसम केंद्र भोपाल ने रीवा और सागर संभाग के 6 जिलों निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना और रीवा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं इंदौर, उज्जैन संभाग समेत प्रदेश के करीब 40 जिलों में हल्की से तेज बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। बारिश का असर राजधानी भोपाल में भी साफ नजर आया। यहां कलियासोत बांध के 2 गेट एक बार फिर खोलने पड़े। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: बिहार में भी बाढ़ की स्थिति गंभीर है।
4: पटना, भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, मुंगेर, कटिहार समेत 12 जिलों की 10 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में है। इधर गंगा के डाउनस्ट्रीम में हाथीदह, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर और भागलपुर में नदी के रौद्र रूप से भयावह बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। पुनपुन और सोन नदी में अभी भी उफान जारी है। पूर्व मध्य रेलवे ने पुनपुन रेल पुल संख्या 21 पर सोन नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण आज भी 10 मेमू रेलगाड़ियों के परिचालन को रद्द कर दिया है। इस बीच आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सदा ने मुंगेर में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पीड़ितों की हर प्रकार से मदद की जा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
1: उधर नेपाल तिब्बत में आई भीषण बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1355 हो गई है। सबसे अधिक मौतें चितवन में 363 हुई है। 26 अगस्त को नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के लिए आज नेपाल में राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 ड्यूरंड कप के विजेता टीम वेस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब को राष्ट्रपति कप प्रदान किया। टेनिस में आरना सबालिंका और कार्लोस अल्काराज अमरीकी ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में बेलारूस की शीर्ष वरीयता प्राप्त आरना सबालिंका ने अमरीकी खिलाड़ी टेलर टाउनसेंड को हराया। पुरुष सिंगल्स में स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने अमरीका के टॉमी पॉल को पराजित किया। भारत ने AFC अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप में प्रवेश कर लिया है। भारत ने ताशकंद में कल अंतिम क्वालिफाइंग मुकाबले में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर 20 वर्ष में पहली बार इस प्रतियोगिता में जगह बनाई। AFC अंडर 20 एशिया कप अगले वर्ष 24 मार्च से 10 अप्रैल तक चीन में खेला जाएगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लोक अदालत त्वरित, किफायती और सुलभ न्याय विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। टेलीफोन नंबर है 0112331 0481 2371717। 2371716 और

3-3-1-4-4-4-4। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री जेवियर बेटल के साथ द्विपक्षीय बैठक की। कहा, जब पूरी दुनिया अनिश्चितता से चिंतित है, भारत और लग्जमबर्ग के बीच भरोसेमंद संबंध है। दिल्ली में सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 7 हुई। एमसीडी दक्षिण जोन के उपायुक्त और 4 इंजीनियर निलंबित। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस सांसद नदीमुल हक के उर्दू दैनिक से जुड़े 7 परिसरों में धन शोधन के आरोप में छापेमारी की। बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तक तेज बारिश का अनुमान। और टेनिस में अरेना सबालेंका तथा कार्लोस अल्काराज अमरीकी ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हेलो मुंबई, क्या हाल है आपका? उम्मीद है मूड अच्छा होगा, और अगर नहीं है तो परेशान होने की कोई बात नहीं है जी, क्योंकि अगले कुछ मिनटों तक जिम्मेदारी हमारी है आपका मूड ठीक करने की। होंगे कुछ शानदार गाने, थोड़ी बातें, कुछ यादें और ढेर सारा म्यूजिक। दोस्तों, कुछ गाने हमें हंसाते हैं, बिना कुछ कहे दिल की बात कह जाते हैं। तो आज की इस म्यूजिकल गैदरिंग में आपका स्वागत है। मैं हूं आरजे रॉबिन और आप सुन रहे हैं लव यू जिंदगी, और शुरू करते हैं आज का ये कारवां।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: Dosto, pehla pyar. शायद ज़िंदगी का वो एहसास है जिसे हम कभी पूरी तरह भूल नहीं पाते। वो पहली मुलाकात, पहली नज़र, वो बेवजह मुस्कुराना और दिल का चुपके से किसी का नाम हो जाना। कुछ ऐसा ही मासूम एहसास लेकर आया था हम आपके है कौन का ये गीत पहला पहला प्यार है। लेकिन प्यार सिर्फ किसी को चाहने का नाम नहीं, प्यार वो एहसास है जो दिल में कदम बढ़ाने की हिम्मत जगाता है और फिर दिल कहता है चलो उनसे मिलते हैं। तो पहली मोहब्बत की उसी खूबसूरत कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ के साथ अकेले हम अकेले तुम का गीत दिल कहता है। तो चलिए सुनते हैं दोनों प्यारे गीत FM रेनबो 107.1 पर जो है म्यूजिकली योर्स।

दोस्तों, मेरा नाम है आरजे रॉबिन और आप सुन रहे हैं लव यू जिंदगी। कभी कभी प्यार की शुरुआत किसी लंबे रिश्ते से नहीं होती, बस एक नज़र मिलती है और दिल को लगता है शायद यही वो इंसान है जिसका हम वेट कर रहे थे। एक नज़र में दिल का यूं किसी का हो जाना और फिर हर पल उसी चेहरे का ख्याल आना, प्यार वाकई बड़ी प्यारी अदा है। कुछ ऐसा ही एहसास लेकर आया था फिल्म

ग्रेस का रोमांटिक गीत पहली नजर में, लेकिन जब वो पहली नज़र धीरे धीरे मोहब्बत में बदल जाए तो फिर दिल की ख्वाहिशें भी छोटी नहीं रहती। दिल चाहता है उस इंसान को के साथ बस यूं ही चलते रहें दूर, बहुत दूर, आसमान की हदों तक। और इसी खूबसूरत एहसास को आगे बढ़ाता है फिल्म टशन का यह गीत फलक तक। तो चलिए सुनते हैं ये दोनों प्यारे गीत।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: दोस्तों हमारे साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं. विजेंद्र घटोल जी हैं, यशवंत आडमुटे, अशोक पाटिल, दिनेश दिलेश, संजय दर्शन, प्रणव शिंदे, राकेश माथुर, पंकज मोहोड, राजेंद्र परमा, श्रीधरन जी. वो काफ़ी टाइम से मेरा वेट कर रहे थे, तो थैंक यू सो मच, आप मेरा वेट कर रहे थे और देखिए मैं आ गया. और वैदही गुड इवनिंग बोल रही हूँ, आपको भी गुड इवनिंग. हितेंद्र दास, रामदास तांबे, विश्वनाथ, और भी बहुत लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनको काफ़ी अच्छा लग रहे हैं हमारे गाने. दोस्तों कभी कभी दिल में किसी के लिए बहुत कुछ होता है लेकिन जुबां पर आते आते

वो बातें कहीं खो जाती हैं। दिल चाहता है कि सामने वाला खुद समझ जाए, हमारी खामोशी को पढ़ ले, हमारी आंखों में छुपी मोहब्बत को महसूस कर ले। लेकिन प्यार में एक पल ऐसा भी आता है जब दिल कहता है, अब यह एहसास छुपाना नहीं, कह देना चाहिए। इसी खूबसूरत कश्मकश को आवाज़ देती है फिल्म अजहर का ये गाना, बोल दो ना जरा।

का इजहार हो जाए तो फिर दिल बस चाहता है कि ये खूबसूरत एहसास यूं ही बना रहे, जैसे संगमरमर पर लिखी कोई ऐसी कहानी जिसे वक्त भी मिटा ना पाए। तो चलिए इसी नर्म सी मोहब्बत को आगे बढ़ाते हैं फिल्म यंगिस्तान के इस प्यारे से गीत के साथ।

दोस्तों अब समय हो रहा है लव यू जिंदगी को विदा करने का। ठीक 6:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार मराठी में। उसके बाद हम आपसे दोबारा मिलेंगे 6:15 पर अंदाजे ब्याह में। सुनते रहिए FM Rainbow 107.1 म्यूजिकली योर्स। मैं हूँ RJ रॉबिन।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: Dosto, kabhi mohabbat dastak nahi deti. बस धीरे धीरे दिल में उतरती चली जाती है। पहले किसी की बात अच्छी लगती है, फिर उसकी आवाज़ का इंतज़ार होने लगता है, और फिर यूं ही किसी शाम हवाओं में भी उसी का जिक्र होने लगता है। इश्क की भी अजीब रवायत है साहब, कदमों की आहट नहीं होती मगर दिल को खबर हो जाती है। तो चलिए इसी खूबसूरत एहसास को आगे बढ़ाते हैं अंदाज़े बयां में, मेरे यानी आरजे रॉबिन के साथ।

0: great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: दोस्तों, आप सुन रहे हैं अंदाज़े में और मैं हूं आपका दोस्त आरजे रॉबिन। एक शेर अर्ज किया है, फिजाओं में जैसे मोहब्बत की खुशबू घुली है, सितारों की महफिल सजी है आसमां में, हर तरफ जैसे कोई साकित सी गुफ्तगु है, हवाओं के झोंकों में किसी की याद है, दिल के आईने में किसी की तस्वीर आबाद है, लब खामोश हैं मगर एहसास बोलते हैं, कुछ ख्वाब आंखों में चुपके से डोलते हैं, कभी चांद को निहारते हुए किसी का ख्याल आता है, कभी बेवजह ही दिल मुस्कुरा जाता है, शायद रात का ये जादू है या फिर किसी की मोहब्बत का असर है। तो आइए कुछ ऐसे नगमे सुनते हैं जो दिल की खामोशियों को आवाज़ दें और इन फिजाओं में मोहब्बत का रंग भर दें।

0: Swahili FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: कुछ मुलाकातें छोटी होकर भी यादगार होती हैं और कुछ बातें खामोश होकर भी दिल के करीब होती हैं. इसी खूबसूरत एहसास के साथ अंदाज़े बयां को करते हैं विदा और मिलते हैं आपसे आपके चहेते कार्यक्रम में जिसका नाम है हम तुम. और दोस्तों, आज की हमारी जो थीम है, आपको ऐसे गाने की फरमाइश भेजनी है जिसमें दिल का जिक्र हो. कोई भी गाने जो दिल से शुरू हो, दिल आता हो उस गाने में, तो ऐसे गाने आपको हमें रिक्वेस्ट भेजनी है. सुनते रहिए FM Rainbow 107.1. मैं हूँ RJ रॉबिन.

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके चहेते शो में जिसका नाम है हम तुम। और जैसे कि मैंने कहा आज की हमारी थीम है ऐसे गाने की फरमाइश भेजनी है जिनमें दिल का जिक्र हो। तो बहुत सारे रिक्वेस्ट आ चुके हैं और मुश्किल होगा कि सारे गाने प्ले करने का, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि जितने गाने प्ले हो सके वो हम करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले गाने से जिसकी फरमाइश काफ़ी लोगों ने की है। गाने के बोल हैं दिल तो पागल है और इसकी फरमाइश की है विजेंद्र घटोल, शैलेश विक्रम, चेतन और प्रणव जी ने। चलिए सुनते हैं ये गाना।

दिल का रिश्ता, इसकी फरमाइश की थी शुभदा कंचन रोहा से और राजू जी ने। तो चलिए अब अगला गाना सुनते हैं। वो कहते हैं ना कि जिस गाने में सबसे ज़्यादा वोट हो वो गाना पहले प्ले करना चाहिए। तो चलिए अब वो गाना प्ले करते हैं, पहले उसी गाने को प्ले करते हैं। गाने के बोल हैं दिल है कि मानता नहीं, और इसकी फरमाइश की है फिरोज सिकनपुरिया, अशोक पाटिल, अरविंद जी, हितेंद्र दास, चेतन जी, प्रणव जी और भी बहुत सारे हमारे साथियों ने। तो चलिए ये गाना प्ले करते हैं।

दोस्तों, अब जो गाना प्ले होने वाला है ये बहुत ही प्यारा गाना है और इसकी रिक्वेस्ट भी काफ़ी लोगों ने की है। मुकेश वालिया, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, बलवीर सिंह, मोहिनी, ऋतिक। तो चलिए ये गाना प्ले करते हैं और आपको भी ये गाना बहुत अच्छा लगेगा।

दोस्तों, अगला जो रिक्वेस्ट आया है, इट्स ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। और गाने के बोल हैं दिल तू ही बता, मूवी का नाम है क्रिश 3। तो चलिए ये गाना प्ले करते हैं। दिस सॉन्ग इज़ फॉर यू संगीता।

अब समय की थोड़ी पाबंदी है, तो दो गाने और प्ले हो सकते हैं, इसकी रिक्वेस्ट की है महेश, और दूसरा गाना है दिल लगाना, इसकी रिक्वेस्ट की है राकेश ने। और बहुत जो लोग गाने प्ले नहीं हो पाए उनके हम नाम लेना चाहेंगे, प्रिया जी हैं और संजय दर्शन, राकेश माथुर, इनकी इनका गाना हमने प्ले किया था, मंगेश जी हैं, अशोक पाटिल, महाराज कीर्तनपुरी, संजय पाटिल, प्रांजल पाटिल, बलकरण वर्मा, दत्ता जी, प्रदीप जी, अनिल जी, आकांक्षा, मनोज, राजेंद्र परमार, दत्ता रे आदत, दिग्दर्शन और कविता, सुनील

चल, और भी बहुत सारे लोग हैं, तो माफ़ी चाहता हूँ कि गाने प्ले नहीं कर पाया, क्योंकि थीम ही ऐसी थी कि इतने सारे गाने थे कि चूज़ करना बहुत मुश्किल था। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, और ये दो गाने हम बैक टू बैक प्ले करते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। रक्षा खरीद परिषद ने 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, क्षेत्रीय परिषदें विकास और जनकल्याण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए LPG रिफिल बुकिंग का 25 दिन का अंतराल समान रहेगा। नई दिल्ली में सत्य निकेतन इमारत ढहने की घटना में नगर निगम के 5 अधिकारी निलंबित। दिल्ली उच्च न्यायालय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। निर्वाचन आयोग ने असम की नगांव लोकसभा सीट पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव की घोषणा की। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की 2-2 विधानसभा सीट तथा पुदुचेरी में 1 सीट पर भी उपचुनाव। और अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में शीतल देवी महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में पहुंची, भारत का पदक पक्का। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये मंजूरी आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में दी गई।
1: परिषद की बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक और सर्वत्र ब्रिज सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई। नौसेना के लिए अरुद्रा रडार की भी खरीद तथा मरीन गैस टर्बाइन के डिजाइन और विकास के बाद उनकी खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। वायुसेना की युद्धक क्षमता बढ़ाने के लिए लड़ाकू विमानों, परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टरों से जुड़े कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा ग्राउंड बेस्ड मल्टीपर्पज जैमर और डिफेंस फोर्सेस सिक्योर एक्सेस कार्ड प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 98% खरीद भारतीय उद्योग से की जाएगी। CBRN टोही वाहन क्षेत्रों की पहचान, निगरानी और उन्हें चिन्हित करने में सक्षम होंगे। रिशु के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात यात्रा पर रहेंगे। श्री मोदी राज्य में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पूर्वी और पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे देश के परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना है।
2: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी कल राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे। 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, हाथ में लेके जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया और अब कंप्लीट हुआ।
0: प्रधानमंत्री कल शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की।
3: 8 दशकों की गौरवशाली गोवा पुलिस की सेवा राष्ट्रपति जी के दिए हुए निशान के साथ देश भर की पुलिस की कतार में खड़ी है। ये गौरव जिन जिन राज्यों की पुलिस को मिला वो पुलिस के गौरवशाली इतिहास, साहस, अनुशासन और समर्पण के कारण ही राष्ट्रपति महोदय ने गोवा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने का काम किया है।
0: इससे पहले गृह मंत्री ने आज गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बीच अब कोई विवाद नहीं है। उन्होंने इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया। श्री शाह ने कहा कि क्षेत्रीय परिषदें अब केवल विवादों के समाधान का मंच नहीं रह गई हैं, बल्कि जन कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।
4: गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बैठक में शामिल हुए। दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। बैठक में केंद्र और राज्यों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज समारोह में श्री

0: ने गोवा पुलिस की सेवा और साहस की सराहना की। उन्होंने 1930 हेल्पलाइन के लिए AI आधारित वॉयस असिस्टेंट शुरू किया। श्री शाह ने 112 हेल्पलाइन पर कम हुए प्रतिक्रिया समय का उल्लेख किया और गोवा पुलिस से 2029 तक नशीले पदार्थों की समस्या खत्म करने में नेतृत्व करने का आह्वान किया। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, फर्जी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा है कि सरकार ने तेल विपणन कंपनियों को घरेलू रसोई गैस LPG रिफिल बुकिंग के नियमों में बड़ी छूट देने का निर्देश दिया है। अब देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में सभी घरेलू LPG उपभोक्ता 25 दिन के अंतराल पर सिलेंडर बुक करा सकेंगे। श्री गोपी ने कहा कि देश में LPG आपूर्ति में सुधार और बैकलॉग में आई भारी कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने ये पाबंदी हटाई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उप प्रबंध निदेशक नाइजेल क्लार्क से भेंट की। बैठक में भारत और कोष के बीच संबंधों पर चर्चा हुई। इस दौरान कोष ने दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र को मजबूत करने में भारत की भूमिका की सराहना की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करते हुए वैश्विक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा केंद्र के रूप में उभरना चाहिए। नई दिल्ली में फार्मा मैक टेक और लैब नेक्स्ट एक्सपो 2026 के उद्घाटन समारोह में श्री गोयल ने यह बात कही।
5: ये सुनिश्चित करें कि गुणवत्ता से कोई समझौता ना हो और हमारी सेवाएं उच्च मानकों वाली हो। न केवल हर भारतीय को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा मिले, बल्कि हम दुनिया को स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रदान करें। सभी मशीनें और उपकरण भारतीय हो, भारतीय दवाओं और फार्मेसी का इस्तेमाल हो और भारतीय डॉक्टर मरीजों की देखभाल करें।
1: निर्वाचन आयोग ने असम की नगांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की दो दो विधानसभा सीट और पुदुचेरी की एक सीट पर उपचुनाव की घोषणा भी की गई है। आयोग ने बताया कि तमिलनाडु की मधुरंतकम और धरपुरम सीट, पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीट तथा पुदुचेरी की थट्टन चावड़ी विधानसभा सीट पर मतदान होगा। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना बुधवार को जारी की जाएगी। नामांकन इस महीने की 16 तारीख तक दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 6 अक्टूबर को और मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सत्य निकेतन इमारत के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही लापरवाही बरतने के आरोप में नगर निगम के 5 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए पूरी दिल्ली में 5वीं मंजिल वाली इमारतों को तुरंत सील करने के आदेश दिए हैं। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी के सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
6: न्यायालय ने कहा कि जांच में ये देखा जाए कि इमारत के लिए सभी जरूरी मंजूरियां ली गई थीं या नहीं, किसी भी लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान की जाए और उनके खिलाफ की गई या प्रस्तावित कार्रवाई की जानकारी दी जाए। न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के आसपास निजी पीजी और छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर चिंता भी जताई। न्यायालय ने नगर निगम को सभी पीजी आवासों का निरीक्षण कर ये सुनिश्चित करने को कहा है कि उनका संचालन जरूरी मंजूरियों और भवन उपनियमों के अनुसार

0: हो रहा है। केंद्र दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और नगर निगम की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय को भरोसा दिलाया कि घटना से निपटने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उच्च न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों को 10 दिन के भीतर जवाब और हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
4: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: ये आकाशवाणी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष वी नारायणन ने इसरो के निजीकरण से जुड़ी खबरों को खारिज कर दिया है। बेंगलुरु में आज उन्होंने कहा कि इसरो एक सरकारी संगठन है और इसके निजीकरण का कोई सवाल ही नहीं है।
5: इसरो इज नॉट प्राइवेट।
6: इसरो एक सरकारी संस्था है और हम सरकारी निवेश के अंतर्गत काम कर रहे हैं। इसरो और NCS के मुख्य लक्ष्यों में से एक बजट के अनुरूप अंतरिक्ष उपकरणों की लागत कम करना है। इसरो को हर साल सरकार आवश्यकता के अनुसार बजट देती है, बजट की कोई कमी नहीं है।
1: चीन में भारतीय दूतावास ने पिछले महीने हुए भीषण भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में लापता भारतीय नागरिकों के परिजनों से पहचान प्रक्रिया में सहायता के लिए DNA नमूने उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। दूतावास ने कहा कि जो परिवार DNA संबंधी जानकारी देना चाहते हैं, वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त CODIS प्रारूप में संबंधित जानकारी भारतीय दूतावास को उपलब्ध कराएं। दूतावास इस जानकारी को संबंधित चीनी अधिकारियों को भेजेगा। शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अहमदाबाद में आज सेमीफाइनल में शीतल देवी ने सरिता को हराया। खिताबी मुकाबले में शीतल का सामना कजाकिस्तान की एजादा सिदान से होगा। कांस्य पदक के मुकाबले में सरिता चीन की वांग हुई तिंग से खेलेंगी। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रसारित होने वाले पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में आज का विषय है लोक अदालत, त्वरित, किफायती और सुलभ न्याय। आज रात 9:30 बजे इस फोन इन कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में हमारे विशेषज्ञों से इस विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भेज सकते हैं। सवाल #AskAIR के साथ X पर भी पोस्ट किए जा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा खरीद परिषद ने 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, क्षेत्रीय परिषदें विकास और जनकल्याण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए LPG रिफिल बुकिंग का 25 दिन का अंतराल समान रहेगा। नई दिल्ली में सत्य निकेतन इमारत ढहने की घटना में नगर निगम के 5 अधिकारी निलंबित। दिल्ली उच्च न्यायालय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। निर्वाचन आयोग ने असम की नगांव लोकसभा सीट पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव की घोषणा की। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की 2-2 विधानसभा सीट तथा पुदुचेरी में 1 सीट पर भी उपचुनाव। और अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में शीतल देवी महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में दी गई। परिषद की बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक और सर्वत ब्रिज सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 98% खरीद भारतीय उद्योग से की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात यात्रा पर रहेंगे। श्री मोदी राज्य में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पूर्वी और पश्चिम समर्पित माल ढुलाई गलियारे देश के परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना है।
1: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी कल राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे, 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लेके जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया और अब कम्प्लीट हुआ।
0: प्रधानमंत्री कल शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की।
2: 8 दशकों की गौरवशाली गोवा पुलिस की सेवा राष्ट्रपति जी के दिए हुए निशान के साथ देश भर की पुलिस की कतार में खड़ी है। ये गौरव जिन जिन राज्यों की पुलिस को मिला, वो पुलिस के गौरवशाली इतिहास, साहस, अनुशासन और समर्पण के कारण ही राष्ट्रपति महोदय ने गोवा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने का काम किया है।
0: इससे पहले गृह मंत्री ने आज गोवा के पणजी में पश्चिम क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बीच अब कोई विवाद नहीं है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा है कि सरकार ने तेल विपणन कंपनियों को घरेलू रसोई गैस एलपीजी रिफिल बुकिंग के नियमों में बड़ी ढील देने का निर्देश दिया है। अब देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी घरेलू एलपीजी उपभोक्ता 25 दिनों के अंतराल पर सिलेंडर बुक करा सकेंगे। श्री गोपी ने कहा कि देश में एलपीजी आपूर्ति में सुधार और बैकलॉग में आई भारी कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने ये पाबंदी हटाई है। निर्वाचन आयोग ने असम की नागांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा की है। इसके साथ ही तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की 2-2 विधानसभा सीटों और पुदुचेरी की 1 सीट पर उपचुनाव की घोषणा की गई है। आयोग ने बताया कि तमिलनाडु की मदुरंतकम और धर्मपुर सीट, पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीटें तथा पुदुचेरी की थट्टन चावड़ी विधानसभा सीट पर मतदान होगा। मतदान 6 अक्टूबर को और मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सत्य निकेतन इमारत के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही लापरवाही बरतने के आरोप में नगर निगम के 5 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए पूरी दिल्ली में 5वीं मंजिल वाली इमारतों को तुरंत सील करने के आदेश दिए हैं। दक्षिण लेबनान में इसराइल के हवाई हमलों में 12 लोगों की मौत हो गई है। कफर रोमाने गांव में एक रिहायशी इमारत पर हुए हमले में 11 लोग मारे गए, जिनमें 2 बच्चे और 4 महिलाएं शामिल हैं। शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अहमदाबाद में सेमीफाइनल में शीतल देवी ने सरिता को हराया। कांस्य पदक के मुकाबले में सरिता चीन की वांग हुईटिंग से खेलेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जी हाँ दोस्तों, ख्याल कभी भी किसी का भी आ सकता है, रफ्तार कैसी भी हो, पर खुशी और उमंग के रंगों में कभी भी कमी ना आए, यही कोशिश करनी चाहिए। इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि खुशी और उमंग के रंगों में कभी कमी ना आए। जिंदगी हो या फिर कोई भी महफिल, हमेशा हमेशा खुशनुमा और खूबसूरत बनी रहे, इस बात का भी ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। बिल्कुल आपकी और मेरी दोस्ती की तरह। जी हाँ, जिस तरह से आपकी और हमारी दोस्ती एकदम बिंदास है, खुशनुमा है और प्यारी है और रंगों से भरी है, इसी तरह से कोशिश करनी चाहिए कि हर महफिल खुशनुमा हो, रंगीन हो और प्यारी हो। सुनते रहिए आकाशवाणी का रेनबो चैनल।

जी दोस्तों, मेरे पास जो सबसे पहले मैसेज आया है वो आया है त्रिची से, एम राजकुमार जी का। वो हमें ऐप के ज़रिए सुन रहे हैं और उन्हें हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है और साथ में उन्होंने वेलकम भी किया, तो थैंक यू सो मच। एक और मैसेज मेरे पास आया है, वो लिखते हैं, गुड इवनिंग रेखा जी, आप पहले एक क्वेश्चन पूछा करते थे कि ये गज़ल के सिंगर कौन है या कुछ भी म्यूज़िक से रिलेटेड, और ऐसा क्वेश्चन फिर कीजिए ना। वरुण लिखते हैं इंदौर से, तो चलिए इस बात पे गौर किया जाएगा वरुण जी। एक और मैसेज मेरे पास आया है राजकुमार के संतानी अकोला महाराष्ट्र से, गुड इवनिंग रेखा जी, वेलकम टू द सेकेंड शो, और मैं आपको सुन रहा हूँ कार्यक्रम गीत गज़ल, आपकी बातचीत भी पूरे कार्यक्रम में चार चांद लगा रही हैं, और मोहम्मद रफ़ी शाह साहब को शत शत नमन भी किया है इन्होंने, बेहतरीन गजलें जगजीत सिंह जी की भी, तो थैंक यू सो मच। एक और मैसेज ले लेते हैं, गुड इवनिंग रेखा चौधरी जी, रंगे महफिल नहीं है दोस्त, लगता है आपको अभी नींद आने लगी है। रंगे महफिल कार्यक्रम हो चुका है और ये जो प्रोग्राम है इसका नाम है रंगे, हाँ आपने पहले रंगे महफिल से पहले कुछ और लिखा है, लेकिन ये प्रोग्राम रंगे महफिल है, बाद में रंगे महफिल आपने शामिल किया है, तो जो पहले 9 बजे वाला प्रोग्राम था आपकी याद आती रही वो तो हो चुका है, और ये सच में सेकंड टाइम में आपने ठीक लिखा है, रंगे महफिल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो चलिए, आपको बाद में ही सही याद तो आया, लेकिन दोस्त आपने अपना नाम नहीं लिखा है। एक और मेरे पास मैसेज आया है, वो भी लिखते हैं, गुड इवनिंग रेखा चौधरी, रंगे महफिल कार्यक्रम लाजवाब है, प्रस्तुतिकरण उससे भी ज़्यादा शानदार है, गज़ल झुकी झुकी सी नज़र बहुत पसंद आ रही है, नाइस प्रेजेंटेशन, किशन वंजनी, नीलम स्वाति, और ये लिखते हैं किशोर रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से। एक और मैसेज ले लेते हैं, पंकज अमरावती महाराष्ट्र से, गुड इवनिंग आरजे रेखा जी, कार्यक्रम रंगे महफिल बहुत बढ़िया कार्यक्रम प्रस्तुत आरजे मैडम जी, और गीत बहुत पसंद आ रहे हैं, झुकी झुकी सी नज़र, ये इनको बहुत पसंद आया है जगजीत सिंह जी की आवाज़ में। तो दोस्तों, यही कहूँगी कि जो दिल को अच्छा लगे ना, वही आपको काम करना चाहिए और वही संगीत भी सुनना चाहिए, फिर चाहे वो गीत हो, गजलें हो, या कोई भी ऐसा म्यूजिक जो आपको पसंद आए, आपको सुकून दे। धड़कनों की रफ्तार जब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे ना दोस्तों, और दिल सुकून की तलाश में बेचैन होने लगे, किसी को मिलने या पाने की ख्वाहिश इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि वो चाहत जुनून में बदल जाए, तो आप क्या समझेंगे या आपको क्या समझना चाहिए? और अगर अब भी समझाने की जरूरत है तो फिर चलिए समझा

जी दोस्तों, अभी इस गज़ल से पहले मैंने जो बात कही धड़कनों की रफ्तार की, दिल के सुकून की, ख्वाहिशों की या किसी से मिलने की ख्वाहिश जब जुनून बन जाती है तो इसका मतलब क्या होता है। जी हाँ, जो लोग समझ चुके हैं तो भाई बहुत बहुत आप समझदार हैं, और जो नहीं समझे हैं ऐसी बात नहीं है कि वो समझदार नहीं है। हाँ, वो भी समझदार हैं, लेकिन जो समझ चुके हैं उनसे थोड़ा सा कम। जी हाँ, चलिए मैं बता देती हूँ कि इस गज़ल से पहले मैंने जो बात कही उसका एक ही मतलब है दोस्तों, कि जब ये सब चीज़ें आपकी ज़िंदगी में शामिल होने लगे या आपको ये लगने लगे कि आप कुछ इस तरह से हो गए हैं कि आपको दिल के सुकून की ज़रूरत है या आपकी धड़कनें जो हैं वो तेज़ होने लगी हैं।

0: किसी की मिलने की ललक बढ़ने लगी है। आपकी ख्वाहिश होती है कि उस शख्स से बात किया जाए या मिला जाए या फ़ोन पे ही सही उससे बात की जाए। वो आपकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा सा बन जाता है। जब तक आप उससे ना मिले तो फिर आप बेचैन से रहते हैं। तो इसका मतलब है कि बस समझ लीजिए कि ये वही दौर शुरू हो चुका है, वो ट्रैक शुरू हो चुका है इश्क का, मोहब्बत का, प्यार का। सुनते रहिए आकाशवाणी का रेनबो चैनल। आपको बता दूं कि प्रोग्राम शुरू हो चुका है रंगे महफिल, और रंगे महफिल के सफर में मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त रेखा चौधरी। 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर दिल्ली और एनसीआर में और पूरे भारत में हम जुड़े हैं आपसे अलग अलग जगहों पर, अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पर। और हाँ, अब तो ऐप के जरिए भी आप हमें सुन सकते हैं कभी भी कहीं भी। फिलहाल एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, फिर लौटते हैं आपके साथ, आपके पास,
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक। हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान, इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: न जाने क्यों बेचैनी में भी सुकून मिलता है, न जाने क्यों भाग दौड़ में भी थकान महसूस नहीं होती, न जाने क्यों रात को नींद न आने पर भी एक अजीब सा एहसास होता है, न जाने क्यों किसी मिलने की इच्छा बार बार होती है, न जाने क्यों जब कोई बात ना करे तो थोड़ा बुरा सा लगता है, न जाने क्यों। ऐसे ही न जाने कितने सारे सवाल हमारे दिल में आते हैं और इन सवालों के जवाब भी हमारे पास ही होते हैं, लेकिन अगर इन सवालों के जवाबों को कोई और दे तो दिल को बहुत बहुत अच्छा लगता है।
3: हुजूर आपका भी

जी हाँ दोस्तों, अल्फाजों से जुड़े हम अधूरे से थे, अल्फाजों से जुड़े हम अधूरे से थे, दिल के तार जुड़े तो एहसास से मोहब्बत लगने लगा।

इस गीत के सिंगर्स का नाम बताना है वरुण, जो आपने ख्वाहिश की थी। चलिए उसको पूरा कर देते हैं। जितने भी हमारे लिसनर्स सुन रहे हैं, अगर ये सिंगर्स के नाम आपको पता है तो फिर आप मैसेजेस के ज़रिए बता सकते हैं, लेकिन हाँ, चीटिंग नहीं करनी है।

0: जी हाँ दोस्तों, आपके मैसेजेस आने लगे हैं और कुछ हमारे लिसनर्स हैं बिल्कुल ईमानदारी के साथ, उन्होंने कहा नॉट कंफर्म, लेकिन मैं बात करती हूँ इस एक छोटे से ब्रेक के बाद और आपको बताऊंगी कि जो आवाज़ सुनी आपने वो आवाज़ किसकी थी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: जी दोस्तों, मेरे पास जो सबसे पहले मैसेज आया है वो आया है पंकज जी का, अमरावती महाराष्ट्र से। उन्होंने लिखा है नॉट कंफर्म मैडम जी, तो ये बहुत अच्छी बात है। देखिए इन्होंने कितनी ईमानदारी के साथ अपना

जो जवाब था वो दिया। और एक और मेरे पास मैसेज जो आया है उसको भी पढ़ लेते हैं। सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी का शांति नगर सोनीपत से वो लिखते हैं, रेस्पेक्टेड रेखा चौधरी जी, वेरी हैप्पी एंड हेल्दी मंडे, गुड इवनिंग, गुड नाइट, वी आर लिसनिंग योर प्रोग्राम। तो उन्होंने जो जवाब दिया है, उन्होंने प्रेजेंटेशन की भी काफ़ी तारीफ की और उनको गज़लें पसंद आ रही हैं। गॉड ब्लेस यू भी लिखा है उन्होंने लिखा है, जो सिंगर्स का नाम वो लिखा है लता और तलत अजीज़, यानी कि लता मंगेशकर और तलत अजीज़, ये बिल्कुल सही जवाब है। और वरुण जी, आपका जवाब तो अभी तक आया ही नहीं, और पॉसिबल हो तो नेक्स्ट का जवाब ज़रूर दीजिएगा। चलिए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, और इस प्रोग्राम के आगे बढ़ते बढ़ते यही बात कहूँगी कि जब भी दिल में किसी के कोई भी बात आती है तो फिर उसे साफ साफ शब्दों में किसी से शेयर किया जाता है। एक दो शब्द समझ में नहीं आते हैं कई बार। एक मेरे पास मैसेज आया, उन्होंने कुछ कुछ शब्दों में भेजा है मैसेज, ना तो अपना नाम लिखा है और न ही लिखा है किस जगह से उन्होंने अपना नाम, मतलब अपना मैसेज भेजा है। तो चलिए कोशिश कीजिए अपने जो मैसेज हैं वो अपने नाम और जगह के नाम के साथ भेजें। सुनते रहिए आकाशवाणी का रेनबो चैनल, प्रोग्राम चल रहा है जी हाँ रंगे महफिल, और रंगे महफिल के सफ़र में आप और हम साथ साथ हैं।

जी हाँ, जब महफिल की बात चलती है तो दिल में जहन में एक ख्याल आता है कि पिछली बार, अगली बार या कब हम मिले थे या मिलेंगे अपने यारों से, दोस्तों से। मेरे पास एक मैसेज आया दोस्तों, वो आया है सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी का, शांतिनगर सोनीपत से। उन्होंने ये आवाज़ बिल्कुल सही पहचानी है। जी हाँ, ये आवाज़ भूपेंद्र जी की ही थी। एक और मैसेज मेरे पास आया है, जी हाँ, शर्मा जी का। शर्मा जी, आपने क्या मैसेज लिखा है, अधूरा सा, ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। और एक मैसेज और आया है, गुड इवनिंग आरजी जी, नेम हितेंद्र दास, और ये आसाम से मेरे पास आया, और फिर उन्होंने गुड नाइट भी लिखा है। एक और मैसेज ले लेते हैं। जी हाँ, किसी ने क्या खूब कहा है बहुत लंबा मैसेज है, ये तो मैं नहीं ले पाऊंगी, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप अपना मैसेज भेजें तो कम शब्दों में भेजें तो ज़्यादा अच्छा होगा। एक और मेरे पास मैसेज है, उन्होंने भी अपना नाम नहीं लिखा है और ना ही किस जगह से भेजा है, ये भी नहीं मेंशन किया है। तो भाई, ऐसे मैसेजेस अब मैं लेना बंद करूंगी, तभी आप सब अपने नाम के साथ और जिस जगह से भेज रहे हैं उस जगह के साथ नाम लिखकर भेजा करेंगे। अदरवाइज आप तो मानने वाले हैं नहीं, थोड़ा सा मुझे ही आपको बताना पड़ेगा कि किस तरह से मैसेज करना है और कितना करना है। तो चलिए, जितने भी हमारे लिसनर्स हैं, जी हाँ, उनमें से बहुत सारे लिसनर्स प्रॉपर अपना जो मैसेज है वो भेज रहे हैं, तो उनके लिए थैंक यू सो मच। और जो नहीं प्रॉपर भेज पा रहे हैं, तो मैं उनसे यही कहूँगी, हमारे पास दोस्तों वक्त तो बहुत होता है, और आपको कितना मैसेज करना होता है, सिर्फ 2-4-5 लाइनें करनी होती हैं, तो आराम से मैसेज

पूरा करिए अपने नाम के साथ करिए। सुनते रहिए आकाशवाणी का रेनबो चैनल और सुनवाने जा रही हूँ आपको बहुत ही खूबसूरत एक और गीत कह लीजिए, और ये आवाज़ आपको पहचाननी है और या फिर कह लीजिए गज़ल। जी हाँ, ये आवाज़ भी अपने आप में बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है।

सजिया छोड़े जा रही हूँ एक खूबसूरत गजल के साथ। आप सभी को स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसी तरह से रेनबो इंडिया सुनते रहिए। अपनी दोस्त आरसी यानी रेखा चौधरी को दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि।

रात्रि के 12 बजे हैं। प्रस्तुत हैं एफएम रेनबो मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करेंगे। रक्षा खरीद परिषद ने 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, क्षेत्रीय परिषदें विकास और जन कल्याण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए LPG रिफिल बुकिंग का 25 दिन का अंतराल समान रहेगा। नई दिल्ली में सत्य निकेतन इमारत ढहने की घटना में नगर निगम के 5 अधिकारी निलंबित। दिल्ली उच्च न्यायालय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह सिंधु ने राष्ट्रीय राजधानी में भवन सुरक्षा, छात्र आवास और PG नियमों को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। निर्वाचन आयोग ने असम की नागांव लोकसभा सीट पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव की घोषणा की। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की 2-2 विधानसभा सीट, पुदुचेरी में 1 सीट पर भी उपचुनाव। लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जवेरिया बेटेल ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता से दोनों पक्षों के कारोबार के लिए नए अवसर सृजित होंगे। दक्षिणी लेबनान में इजरायली हवाई हमलों में 12 लोगों की मौत। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,355 हुई। पीड़ितों की याद में राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया। मौसम विभाग ने आज और कल देश के पूर्वोत्तर हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान जताया। और अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी में पैरा श्रृंखला में शीतल देवी महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में पहुंची। भारत का पदक पक्का हुआ। ये थी अब तक की FM रेनबो मुख्य समाचार।

12:03 और 8 सेकंड हुए हैं। शुरू करते हैं बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम जिसका नाम है जीरो आर शो।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
2: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
1: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
3: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है,
4: ठीक है।
3: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा ना इनके नाम से, उसका जो खर्चा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
2: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
1: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
5: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
1: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
2: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत।

0: वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
0: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
0: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
0: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

रात्रि का एक बजा है। प्रस्तुत है एफएम रेनबो मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करेंगे। रक्षा खरीद परिषद ने 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, क्षेत्रीय परिषद विकास और जन कल्याण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एलपीजी रिफिल बुकिंग का 25 दिन का अंतराल समान रहेगा। निर्वाचन आयोग ने असम की नांगांव लोकसभा सीट पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव की घोषणा की। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की दो दो विधानसभा सीट तथा पुदुचेरी में एक सीट पर भी उपचुनाव। नई दिल्ली में सत्यनिकेतन इमारत ढहने की घटना में नगर निगम के 5 अधिकारी निलंबित। दिल्ली उच्च न्यायालय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। लक्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर बेटेल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। कहा कि भारत और ब्राजील जैसे बड़े देशों को सुरक्षा परिषद में स्थायी भूमिका मिलनी चाहिए। श्री बेटेल 3 दिवसीय भारत यात्रा पर हैं। दक्षिणी लेबनान में इजरायली हवाई हमलों में 12 लोगों की मौत। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,355 हुई। पीड़ितों की याद में राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया। मौसम विभाग ने आज और कल देश के पूर्वोत्तर हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान जताया। और अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में शीतल देवी महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में पहुंची। भारत का पदक पक्का। ये थे अब तक के एफएम रेनबो मुख्य समाचार।

0: पुराने गाने नए पुराने नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

0: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1

0: जिम को सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
2: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
0: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: दीवारें टूट रही है। दारान शाह समान
1: वजीर बाहर दुश्मनों के हमले का मुंह तोड़।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

रात्रि के 2 बजे हैं। प्रस्तुत हैं एफएम रेनबो मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करेंगे। रक्षा खरीद परिषद ने 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि क्षेत्रीय परिषद विकास और जन कल्याण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एलपीजी रिफिल बुकिंग का 25 दिन का अंतराल समान रहेगा। निर्वाचन आयोग ने असम की नागांव लोकसभा सीट पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव की घोषणा की। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की 2-2 विधानसभा सीट तथा पुदुचेरी में 1 सीट पर भी उपचुनाव। नई दिल्ली में सत्य निकेतन इमारत ढहने की घटना में नगर निगम के 5 अधिकारी निलंबित। दिल्ली उच्च न्यायालय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर बेटेल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। कहा कि भारत और ब्राजील जैसे बड़े देशों को सुरक्षा परिषद में स्थायी भूमिका मिलनी चाहिए। श्री बेटेल 3 दिवसीय भारत यात्रा पर हैं। दक्षिणी लेबनान में इजरायली हवाई हमलों में 12 लोगों की मौत। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,355 हुई। पीड़ितों की याद में राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया। मौसम विभाग ने आज और कल देश के पूर्वोत्तर हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान जताया और अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में शीतल देवी महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में पहुंची। भारत का पदक पक्का। ये थे अब तक के एफएम रेनबो मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी
1: 2:03 और 15 सेकंड हुए हैं। शुरू करते हैं प्रोग्राम भुलाए ना बने।

0: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे। मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: अब होगा शिक्षा, मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

लीजिए सुनिए एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करेंगे। रक्षा खरीद परिषद ने 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, क्षेत्रीय परिषदें विकास और जन कल्याण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एलपीजी रिफिल बुकिंग का 25 दिन का अंतराल समान रहेगा। निर्वाचन आयोग ने असम की नागांव लोकसभा सीट पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव की घोषणा की। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की दो दो विधानसभा सीट तथा पुडुचेरी में एक सीट पर भी उपचुनाव। नई दिल्ली में सत्य निकेतन इमारत ढहने की घटना में नगर निगम के 5 अधिकारी निलंबित। दिल्ली उच्च न्यायालय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर बेटेल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। कहा कि भारत और ब्राजील जैसे बड़े देशों को सुरक्षा परिषद में स्थायी भूमिका मिलनी चाहिए। श्री बेटेल 3 दिवसीय भारत यात्रा पर हैं। दक्षिणी लेबनान में इसराइली हवाई हमलों में 12 लोगों की मौत। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,355 हुई। पीड़ितों की याद में राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया। मौसम विभाग ने आज और कल देश के पूर्वोत्तर हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान जताया। और अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में शीतल देवी महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में पहुंची। भारत का पदक पक्का। तो ये थे एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

जी हाँ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में समय हो रहा है रात्रि के 3:03:05। और लीजिए श्रोताओं, अब आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे कुछ खूबसूरत से गीत नॉन स्टॉप म्यूजिक में। तो लीजिए आइए सुनते हैं ये गीत मेरे यानी अलमास रजा के साथ। आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे। रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम

लीजिए सुनिए एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 4 पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे पर हैं। कल उपराष्ट्रपति ने शिलांग में 1,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 5 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। आज अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर पहुंचेंगे। रक्षा खरीद परिषद ने 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने कल गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। नई दिल्ली में सत्य निकेतन इमारत ढहने की घटना में नगर निगम के 5 अधिकारी निलंबित। दिल्ली उच्च न्यायालय ने घटना की

उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एलपीजी रिफिल बुकिंग का 25 दिन का अंतराल समान रहेगा। निर्वाचन आयोग ने असम की नागांव लोकसभा सीट पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव की घोषणा की। तमिलनाडु और पश्चिमी बंगाल की 2-2 विधानसभा सीट तथा पुडुचेरी में 1 सीट पर भी उपचुनाव। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के महानिदेशक डॉ साइमन हैक से मुलाकात की। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल आज से 11 सितंबर तक मेघालय के उमियम में प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। 21 राज्यों और 51 कृषि संस्थानों से 400 से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे। लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर बेटेल 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। कल उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। दक्षिणी लेबनान में इसराइली हवाई हमलों में 12 लोगों की मौत। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1355 हुई। पीड़ितों की याद में राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया। मौसम विभाग ने आज और कल देश के पूर्वोत्तर हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान जताया। और अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में शीतल देवी महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में पहुंची। भारत का पदक पक्का। तो ये थे एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

श्रोता सुन रहे हैं एफएम रेनबो 102.6 MHz पर। साथियों, समय हो रहा है सुबह के 4:03:30 और लीजिए अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम सारेगामा। कार्यक्रम में आप सुनेंगे नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक और मैं रहूंगी आपके साथ, आपकी साथी अलमास रजा। आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर। दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: वंदे मातरम
2: वंदे मातरम।